0: पूनम मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बना।

कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। हरिश्चंद जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट हूं शबीर, स्वागत करता हूं आपका कहानियों के गुल्लक। अब तक हमने हर रोज अलग अलग कहानी सुनी, जिसमें लव लाइफ, अ स्टोरी बिफोर फ्रीडम एंड देन ट्रैवल स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी। पर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद हमने अभी तक सुनाई नहीं। तो ये कहानी है एक मर्डर मिस्ट्री, जहां पे जिसका मर्डर हुआ है वो व्यक्ति या फिर वो आत्मा कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को सिग्नल्स देके अपने कातिल तक पहुंचने में मदद करती है। तो ये वो कहानी है। तो ये कहानी सुनते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। मुंबई की बारिश हमेशा आती है, कभी रोमांटिक, कभी उदास, और कभी ऐसे जैसे आसमान किसी के खून धोने की कोशिश कर रहा है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। रात के करीब 2 बजे थे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एक ब्लैक सेडान डिवाइडर से टकराकर पूरी तरह क्रैश हो चुका था। पुलिस लाइट्स ब्लिंक कर रही,

वीडियो रिकॉर्डिंग की, बैकग्राउंड में हेवी ब्रीथिंग, फिर मिठाई की आवाज डर से भरी। रिदम, अगर तू ये सुन रहा है तो मतलब मैं मर चुका हूँ। रिदम सीधा उठकर बैठ गया। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है, और पुलिस पे ट्रस्ट मत करना। सडनली लाउड मेटालिक साउंड पीछे से, मिखाइल की चीख, और रिकॉर्डिंग अब्रप्टली कट हो चुका। रिदम का गला सूख गया। उसने इमीडिएटली नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। नंबर अनअवेलेबल, डिलीटेड सोर्स, जैसे किसी डेड फोन से भेजा गया। बारिश और तेज हो गई, और तभी किचन से आवाज आई, टक टक टक। रिदम फ्रोज। कौन है? साइलेंस। फिर एक और सवाल, जैसे कोई ग्लास पे उंगली घुमा रहा। रिदम धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। लाइट्स ऑफ थी, विंडो हाफ ओपन, और फ्रिज पे पानी से लिखा हुआ था

अगली सुबह रीदम ने डिसाइड कर लिया था वो मिकाइल की डेथ को एक्सीडेंट मानकर चुप नहीं बैठेगा, चाहे जो। मिकाइल का अपार्टमेंट बांद्रा में था, पुलिस ऑलरेडी सील कर चुकी थी, लेकिन रीदम के पास डुप्लीकेट कीज थी। वो क्वाइटली अंदर घुस गया। अपार्टमेंट में अंधेरा था, बुक्स स्कैटर्ड थी, लैपटॉप मिसिंग था और वॉल्स पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स लगे हुए थे, सब क्राइम रिलेटेड। मिकाइल ऑब्सेशन लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करता था। उसने रिसेंटली एक बड़े बिजनेसमैन को एक्सपोज करना शुरू किया था, नाम विक्रम सिंह, रियल इस्टेट टाइकून, पॉलिटिशियन से लिंक्स और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के रूमर्स। स्टडी टेबल पे एक डायरी मिली, रिदम ने पेजेस पलटने शुरू किए। एक जगह रेड इंक से लिखा था, सैगल के प्रोजेक्ट्स में इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। नेक्स्ट लाइन, मेरे पास प्रूफ है, और उसके नीचे मेरे पास और मेरे साथ कुछ हुआ तो पेश रहो। तभी बेडरूम से आवाज आई, नॉक। रिदम इंस्टेंटली मुड़ गया, बेडरूम का डोर धीरे धीरे खुल रहा था। हेलो, कोई जवाब नहीं। वो स्लोली अंदर गया, कर्टन हवा में हिल रहे थे और मिरर पर फिंगर मार्क्स बने थे, जैसे किसी ने अंदर से स्क्रैच किया। सडनली मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिखा, मिठाई खून से भरा, स्टैंडिंग बिहाइंड। रिदम झटके से उड़ा।

कैमरा सडनली शेक हुआ। किसी ने मिखाइल को देख लिया। हेवी ब्रीथिंग और एक आदमी की आवाज, किल हिम। वीडियो ब्लैक। रिदम का खून खोल गया। ये मर्डर था और पुलिस ने कवर अप किया था। उसने इंस्पेक्टर राणे को कॉल किया। तुमने मुझे झूठ बोला। काम हुआ, मिखाइल का मर्डर हुआ है। फोन के दूसरी साइड साइलेंस। फिर राणे ने धीरे से कहा, तुम इन्वेस्टिगेशन बंद करो रिदम। व्हाई? बिकॉज तुम नहीं समझ रहे हो किससे पंगा ले रहे हो। कॉल कर। उस रात रिदम ने अपार्टमेंट के हर लॉक चेक किया। 3:02 हो चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी चली गई पूरे घर में डार्कनेस। और फिर हाफवे में फुटस्टेप, स्लो वेट फुटस्टेप, जैसे कोई बारिश में भीग कर अंदर आया। रिदम ने फ्लैशलाइट ऑन की। फुटप्रिंट्स फ्लोर पर विजिबल थे और वो डायरेक्टली बेडरूम तक जा रहे। बेडरूम का डोर खुला। अंदर मिखाइल है। पीछे वॉल पे खून। उसका फेस क्रश। आईज ब्लैक। रिदम चीख पड़ा, मिखाइल। फिगर ने धीरे से फिगर लिप्स पे आ गया और फिर उसने कहा, सही। लाइट्स वापस आ गए।

सेगल ने एक लाइन बोली, वैसे डेट पीपल कभी कभी गलत सिग्नल्स भी भेजते हैं। रिदम फ्रीज हो गया। तुम्हें कैसे पता? गुड नाइट मिस्टर रिदम। उस रात रिदम को स्लीप पैरालिसिस हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कोई उसके चेस्ट पे बैठा है। डार्क फिगर, नो फेस, बस वाइट आईज, और वो विस्पर कर रहा है, ही इज लाइंग। रिदम स्क्रीम चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसकी आवाज नहीं निकली। फिगर स्लोली क्लोज आया और सडनली मिखाइल का फेस बन गया। बेसमेंट के नीचे देखा। रिदम झटके से उठ गया, स्वेटिंग। 4:11 सुबह। उसने इमीडिएटली मिखाइल के बिल्डिंग के बेसमेंट में रिविजिट किया। इस बार उसने फ्लोर इंस्पेक्ट किया। एक जगह हॉलो साउंड है, कॉन्क्रीट से। उसने एफर्ट से स्लैब हटाया। नीचे हिडन रूम और अंदर स्मेल ऑफ डेथ। एक चेयर, एक ब्लड सिस्टम्स, चेन्स और वॉल पे डजन ऑफ फोटोग्राफ्स, सब मिसिंग लिंक्स, और एक फाइनल फोटो। उसका हार्ट स्टॉप होने वाला था। कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा था बहुत पहले से। तभी पीछे से फुटस्टेप आई। इंस्पेक्टर रानी, गन पॉइंटेड, हैंड्स अप। रिदम शॉक्ड। तुम? रानी की आंखों में गिल्ट था। मुझे मजबूर किया गया, तुम इन्वॉल्व हो। मैं सिर्फ बॉडी हाइड करता था। रिदम का खून जम गया। बॉडीज? कितनी बॉडीज? रानी ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा। साइकिल सिर्फ ट्रैफिकर नहीं है, वो साइकोपैथ है। देन अरेस्ट हिम, रिदम ने कहा। रानी ऑलमोस्ट क्राइड। तुम नहीं समझते, उसके पास सबका डेटा है। जजेस, पॉलिटिशियंस, पुलिस, सब। सडनली गनशॉट। रानी के फोरहेड से ब्लड निकला। वो रिदम के सामने गिरा। रिदम था। डार्कनेस में एक आदमी खड़ा। स्लोली क्लाइम। विक्रम से निकला। इंस्पेक्टर इमोशनल हो गया था। विक्रम निकला। रिदम भागने लगा। वेयरहाउस टनल से पास। डार्कनेस, रेन वाटर। सहगल पीछे कामली वॉक कर रहा था। तुम्हारे दोस्त ने भी ऐसे ही भागने की कोशिश की थी। रिदम स्टंबल। और तभी उसने मिखाइल की आवाज सुनी। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। रिदम इंस्टेंटली लेफ्ट टनल में मुड़ा और राइट साइड से बुलेट फायर हुई। अगर वो लेफ्ट नहीं मुड़ता तो मर चुका होता। रिदम समझ गया मिखाइल उसकी हेल्प कर रहा है।

रिदम समहाउ अबॉन्डेंट डॉकयार्ड तक पहुंचा। स्टॉर्म हॉरिफाइंग था, लाइटनिंग स्काई को फाड़ रही थी और सडनली उसने एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन हिट हुआ। मिखाइल की बॉडी एक्सीडेंटल साइट पर मिली थी, लेकिन उसकी कार पे ब्लड इंपैक्ट एंगल रॉन्ग था, स्टेयरिंग डैमेज मिसमैच था और सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पे सीट बेल्ट मार्क्स नहीं थे। एक्सीडेंट के बाद में स्टेज किया गया, रियल मर्डर कहीं और हुआ था, डॉकयार्ड। रिदम स्लोली ओल्ड वेयरहाउस के अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखने के बाद उसका दिमाग खिल गया। सेंटर में एक क्रैश कार थी, सेम कार मिखाइल की, और वॉल्स पे ब्लड पड़ा हुआ था। यही मर्डर सीन था। सडनली प्रोजेक्टर ऑन हुआ, एक वीडियो प्ले हुआ। मिखाइल टाइट ऑन अ चेयर सैगल कैमरा के सामने, क्यूरियोसिटी किल्स जर्नलिस्ट, मिखाइल बीटिंग था पर स्माइल कर रहा था, तू बच नहीं पाएगा। सैगल हंसा, तुम ऑलरेडी डेड हो गए। वीडियो ब्लैक, रिदम की आंखों में आंसू आए, उसे फिस्ट टाइटन किए और तभी स्लो क्लैप की आवाज आई। सैगल डार्कनेस से फिर बाहर, इमोशनल, रिदम ने उस पर पंच मारा। ब्रूट एनिमलिस्टिक, सैगल स्ट्रॉन्गर था, उसने रिदम को वॉल पे फेंका। तुम दोनों सेम

रीओपन हुआ, सहगल एक्सपोज हुआ, ट्रैफिकिंग नेटवर्क डिस्ट्रॉयड हुआ, इंस्पेक्टर राणे डिक्लेयर एज अ करप्ट और ऑफिशियली मिखाइल का डेथ होमसाइड डिक्लेयर हुआ। रिदम ने फाइनली पीस फील की, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। एक रात रिदम अपने अपार्टमेंट में ओल्ड फाइल्स देख रहा था। उसे एक एनवलप मिला, मिखाइल की हैंडराइटिंग। उसने खोला, अंदर एक लेटर था। रिदम, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मतलब प्लान सक्सेसफुल। रिदम कंफ्यूज हो गया। लेटर कंटिन्यू, मुझे पहले से पता था मुझे मार दिया जाएगा।

0: कभी कभी दोस्तों, जैसे कि हम सोचते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हमें सिग्नल देती है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कोई बता नहीं पाता और उसे फाइल के अंदर बस एक एक्सीडेंट बोलकर दबाया जाता है, तो ऐसी घटनाओं को भी डेड लोगों के जरिए अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को सिग्नल्स भेजकर बताते हैं। और ऐसी दो चार घटनाएं हैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट में हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हुई होगी। जैसे कि एक जर्नलिस्ट ने कैसे, उसे पता था कि वो मरने ही वाला है और उसने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था सिवाय एक चीज के। पर जैसे आप जानते हो कि जब आपके साथ गलत होता है तो देयर इज ऑलवेज अ गॉड टू हेल्प यू थ्रू आउट द टाइम। तो वही हुआ मिथाइल और रिदम की कहानी में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हुई होगी। और दोबारा हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM। अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए, अपना दिन मनाते रहिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छिप जाऊं ऐसे मेरे अंदाज नहीं, क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? भाई आप सब आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5-10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तक्कू इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तक्कू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है।

वैसे कैरीसा तक को ये रेसिपी पांच स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना पांच स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तक्कूक से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तक्कू इस महाराष्ट्रीयन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तक्कू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तक्कू बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को, ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5-10 मिनट्स के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डालें और उसे चटकने दें। मोहरी तड़तड़ू दे चांगली। फिर उसमें मेथी दाना डालिए। अब हींग का खुशबूदार स्वाद भी ऐड कीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। याद रहे कि हमें इसे गर्म यूज नहीं करना। लगभग 5 मिनट के बाद उसे कैरी के मैरिनेट किए हुए मिश्रण पर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर गरम तड़के को तक्कू पर डाला तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि तड़का ठंडा करके ही यूज करें। एक और टिप, अगर कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तक्कू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी ये एक सुपर फूड है। सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। भाई हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बेरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड।
इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिनहुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आप चम्मच यूज कीजिए। फिर इसमें वॉलनट्स के बारीक टुकड़े डालिए। आप छुरी की मदद से वॉलनट्स के टुकड़े कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच वॉलनट्स के टुकड़े आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाइए, फिर तैयार मिश्रण के नींबू साइज के बॉल्स बनाइए। अब आप अपने घी वाले हाथों से उसके लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डुओं को आप एक साइड में रख दीजिए। अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाएं, तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगीरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक में एक और कहानी। कहानी का नाम है एक हफ्ते की जिंदगी। कुछ कहानियां हमें जिंदगी का ऐसा सबक दे देती है जो शायद हमने कभी सोचा ही ना हो। हम जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानियों में होते कि हम कभी सोच भी नहीं पाते कि उन परेशानियों का हल एक छोटी सी चीज में छुपा हो। तो ये कहानी भी एक ऐसी है कि इतनी बड़ी परेशानियां कैसे हल हो जाती है। तो चलो देखते हैं। सुबह का वक्त था, पहाड़ों के बीच एक पुराना सा आश्रम था। ना कोई शोर, ना शहर की भागदौड़, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज। आश्रम के बाहर एक छोटा सा पत्थर का बोर्ड लगा था जिसमें बस दो शब्द लिखे थे, शांति धाम। यहां रोज लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई बस सुकून की तलाश में। और आश्रम के बीच एक छोटे से चबूतरे पर बैठे थे संत आनंदगिरी महाराज। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल सफेद थे लेकिन चेहरे पर एक अजब सा तेज था, एक अजीब सी रोशनी जिसे सिर्फ कोई महापुरुष या कोई ऐसे संत महात्मा में देखा जाता है जो सिद्धि प्राप्ति कर चुका हो। आंखों में इतनी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। लोग कहते थे ये संत सिर्फ बात नहीं करते, दिल पढ़ लेते हैं। उस दिन भी सुबह का वक्त था, संत आनंदगिरी महाराज चबूतरे पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी आश्रम के गेट पर एक काली लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरा, दरवाजा खोला। कार से एक आदमी बाहर आता है, महंगे कपड़े, ब्रांडेड वॉच, पॉलिश शूज, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उसका नाम था राघव मेहता, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, होटल्स, मॉल्स। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे, लेकिन अगर कोई उसके करीब जाता तो उसे समझ जाता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। राघव धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के अंदर आया। उसने आसपास देखा, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग शांत से दर्शन ले रहे थे और कुछ दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन राघव को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा चबूतरे की तरफ बढ़ गया। संत आनंदगिरी महाराज ने आंखें खोली, उन्होंने राघव को देखा और बस एक पल में ऐसा कुछ हो गया कि राघव आनंदगिरी महाराज के इशारों पर नाचने लगा। जो अपने पैसों के घमंड से, अपने ईगो से भरा पड़ा आदमी, उसे आनंदगिरी महाराज ने कहा इधर आओ बेटा। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, फिर आनंदगिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, पूछो। राघव ने हल्की सी और थकी हुई स्माइल देकर कहा, बाबा सवाल नहीं, बोझ। महाराज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या बोझ है। राघव ने गहरी सांस ली, बाबा मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, पावर, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हूं। आनंदगिरी महाराज चुप रहे। राघव बोलता गया, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त डर लगा रहता है कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी ना छीन ले। भाइयों से कोर्ट केस चल रहा है, बहन से बात बंद है, दोस्तों से झगड़ा हो चुका है। उसकी आवाज थोड़ी भर गई, बाबा मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। महाराज ने कुछ पल तक उसको देखा, फिर पूछा, सच सुनना चाहते हो बेटा,
राघव ने तुरंत सर हिलाया, हाँ हाँ बाबा मैं सच सुनना चाहता हूँ। आनंदगिरी महाराज ने कहा, बेटा सच बहुत कड़वा होता है, शायद इस सच को तुम पचा भी ना पाओ, और शायद ये सच सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकना चाहिए। पर राघव परेशान था, उसके पास कोई और उपाय नहीं था, उसके पास कोई दूसरा सलूशन नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि जैसे तैसे उसके बस सवालों का उसे जवाब मिल जाए, उसके प्रॉब्लम्स का उसे सलूशन मिल जाए। राघव ने जब उनसे कहा कि तुरंत जी बाबा मुझे जवाब बता दीजिए, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे सच बता दीजिए, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, मतलब महाराज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। राघव के पैर के नीचे की जमीन की सकती एक पल में उसे उसके वो बचपन से लेके अब तक के वो सारे दिन एक पल में उसे नजर आ गए। एक हफ्ता, राघव ने कहा, बाबा क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इस एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जितने बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा कर लो, और ये एक हफ्ता तुम ऐसे जियो जैसे कोई नया बालक जब जन्म लेता है तब उसे ना दुनिया ना किसी चीज की पड़ी होती है, वो बस पवित्र होता है, वो बस देना जानता है, वो बस शांत रहना जानता है, वो बस खेलना जानता है, वो बस बस कोमल होता है, बस सच्चा होता है, और तुम ये अपनी जिंदगी का ये एक हफ्ता बस अपने आप से अपने प्रति सच्चे रहो।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शफीर। हम सुन रहे थे एक कहानी जिसका नाम था एक हफ्ते की जिंदगी, जिसमें आपने अभी सुना कि किस तरीके से आनंद गिरी महाराज ने राघव से कहा कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ते की जिंदगी बची हुई है और वो एक हफ्ते अपनी जिंदगी के ऐसे जिए कि वो बहुत सच्चा हो, अपने आप से सच्चा रहे, सच बातें करे, सच चीज करे और जितना हो सके बस सच में रहे और अपनी इस बची कुची जिंदगी को बस वो सच के सहारे जिए। तो देखिए, सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। राघव का बंगलो शहर के सबसे महंगे एरिया में था। ह्यूज ग्लास वॉल्स, इटालियन मार्बल फ्लोर्स, स्विमिंग पूल, सर्वेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ था। लेकिन उस रात उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने बेडरूम में अकेला बैठा था, डिम लाइट जल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। उसने अपने आप से पूछा, अगर सच में मेरी जिंदगी बस एक हफ्ते की है तो मैं ये एक हफ्ते में क्या करूंगा, उसने सोचा। और अचानक से उसके दिमाग में एक चेहरा आया। वो चेहरा था उसके बड़े भाई का। सालों से दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहे थे, लॉयर्स, दलीलें, एक दूसरे पर इल्जाम, और यही प्रॉपर्टी के चक्कर में राघव की फैमिली बट चुकी थी, आधे इधर आधे उधर। यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ने उनकी पूरी फैमिली को तोड़ दिया था।

0: चल रहा था वो उसे सुलझा लेगा। अगली सुबह राघव अपने भाई अरविंद के घर आया, दरवाजा खटखटाया। अरविंद ने दरवाजा खोला, दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। अरविंद ने थोड़े ठंडी आवाज में उनसे बोला, क्या काम है? राघव की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे माफ करो, राघव ने कहा। अरविंद हैरान रह गया, तुम ठीक हो राघव? राघव ने कहा, भाई मुझे घर में नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। राघव और अरविंद दोनों चेयर पर बैठ गए। राघव की आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी, उसके दिल पर मानो एक अजब सा बोझ था। वो बोझ के सहारे जैसे वो जी रहा। अरविंद ने कहा, राघव पानी पी लो। राघव ने पानी पिया। भैया ये फाइल प्रॉपर्टी केस की है, भैया मैं ये केस वापस ले रहा हूं। अरविंद शॉक में था। राघव तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? कुछ मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं भैया, बस मैं ये केस वापस ले रहा हूं, मुझे अब आपसे नहीं लड़ना है। ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस ये आप रख लो, मैं केस वापस ले लेता हूँ। मैं कोर्ट में अपने वकील से कह दूंगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं जो पेपर पे आप बोलोगे उस पेपर पे साइन कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर। राघव ये कहते कहते रो पड़ा और रोते रोते वो अपने भाई के पैरों में गिर गया। अरविंद को ये देखा नहीं गया, उसने राघव को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि नहीं मेरे भाई रोते नहीं हैं, शांत हो जा, मैंने तुझे माफ किया, शांत हो जा मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया। और ये कहते हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन राघव का मन हल्का हुआ, उसके दिल पर जो बोझ था वो भी हल्का हुआ। अब राघव ने डिसाइड कर लिया था कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इस एक हफ्ते में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जितने लोगों से उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने लोग उससे नाराज चल रहे हैं, जितने लोग उससे परेशान हैं, उन सारे लोगों को वो जाकर मनाएगा, उनसे माफी मांगेगा, उनकी जो परेशानियां हैं या जितनी भी तकलीफें उन्हें हुई है उन सारी चीजों के लिए वो जाकर उनसे माफी मांगेगा। और इसी माफी मांगने के अगले सिलसिले में अगला नंबर था उसकी बहन का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

वेलकम दोस्तों, हम सुन रहे थे राघव की कहानी। जैसे कि उसने जाकर अपने भाई से माफी मांग ली और अगला नंबर था वो जाने वाला था अपनी बहन के घर अपनी बहन से माफी मांगने। तो राघव अपनी बहन के घर पहुंचता है और डोर बेल रिंग करता है और जैसे डोर खुलता है राघव अपनी बहन नेहा के चरणों में गिर जाता है और उसे कहता है, बहन मुझे माफ कर, मैंने बड़ी बदतमीजी से तुम्हारे साथ बिहेव किया था। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, तुम्हें कुछ दिया नहीं और बस हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। बहुत सेल्फिश था मैं, पर मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं नहीं रखना चाहता तुम्हारा कुछ, ये फाइल जो है मेरे पास ये तुम रख लो, इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, ये जो तुम्हारा हिस्सा है ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, बस बहन अब ये रख लो और मुझे माफ कर दो मेरी गलतियों के लिए। राघव को रोता हुआ देखकर उसकी बहन नेहा भी रोने लगी और उसने जैसे तैसे अपने भाई को शांत कराया। नेहा ने अपने भाई को माफ किया और दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते राघव ने सोचा कि अगले दिन वो अपने दोस्त कबीर और समीर इन दोनों से सॉरी कहेगा जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे और उसके बचपन के दोस्त भी थे। तो अगली सुबह राघव अपने घर से निकलता है, कबीर और समीर के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं बाहर, तीनों जाते हैं कैफेटेरिया में कॉफी पीने, जहां समीर और कबीर दोनों बैठे और दोनों को देखते हुए राघव बड़े भारी आवाज में और बड़ी पश्चाताप के साथ, उसकी आंखों में वो पश्चाताप नजर आ रहा था और उस पश्चाताप के साथ वो कबीर और समीर से सॉरी कहता है। जब राघव सॉरी कहता है तो कबीर और समीर देखकर शॉक हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं, पागल है क्या यार, तू इतने साल के बाद मिलने आ रहा है और सॉरी बोल रहा है, हमने तो कभी इन चीजों को अपने दिल में रखा ही नहीं था, तू हमारा पहले भी दोस्त था, तू हमारा आज भी दोस्त है और तू हमारा हमेशा दोस्त रहेगा, इन चीजों से हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हाँ कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे बिजनेस को लेकर हमारे बीच में, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये धीरे धीरे सारी चीजें होते गई, राघव के दिल पर जो बोझ था वो धीरे धीरे उतरने लगा था। दिन गुजरते गए, राघव हर दिन किसी ना किसी से मिलता, किसी ना किसी से माफी मांगता, किसी ना किसी को गले लगाता, किसी को शुक्रिया बोलता। अब वो हर रात अच्छा महसूस करने लगा था, उसके अंदर की बेचैनी कम हो रही थी, उसे नींद आने लगी थी, दिल में एक अजीब सी शांति आने लगी थी। फिर आया सातवां दिन, सुबह राघव की आंख खुली, उसने घड़ी देखी, फिर अपने हाथ देखे, फिर आसमान की तरफ देखा, मैं जिंदा हूं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, वो तुरंत कार में बैठा और सीधे आश्रम की तरफ चला गया। संत अनंगिरी महाराज चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, राघव भागते हुए उनके पास आया, बाबा बाबा मैं जिंदा हूं। संत महाराज ने आंखें खोली, राघव खुशी से बोल पड़ा, मैं जिंदा हूं, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता। संत महाराज हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत आवाज में बोले, बेटा तुम मरने वाले तो थे ही नहीं। राघव हैरान रह गया, मतलब? संत बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला। राघव बिल्कुल चुप हो गया। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी परेशानी मौत नहीं थी, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारे ग्रजेस थे, तुम सबसे लड़कर जी रहे थे,
इसीलिए तुम्हारा दिल भारी था और वो सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। जब तुम्हें लगा कि जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की बची है तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया, लालच छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, इसलिए तुम्हें सुकून मिल गया। राघव की आंखों से आंसू निकल गए। आनंदगिरी महाराज मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा अगर इंसान हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जी ले तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। राघव उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और वहां से जब वो निकल पड़ा तो इस बार आश्रम से निकलने के बाद वो एक बिल्कुल नया आदमी था, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना कोई ईगो था ना कोई छल कपट। अब उसने एक ऐसे रास्ते को थामा था जो सच का था और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहता था। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारी परेशानियां बहुत बड़ी होती है लेकिन उन परेशानियों का हल काफी छोटा होता है। ठीक उसी तरह जैसे ताला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो खुल जाता है महज एक छोटी चाबी से। तो हम अक्सर हमारी जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि हमारा आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, पर हम ये नहीं जानते कि मृत्यु ही आखिरी सत्य है और इस सत्य से भागा नहीं जा सकता, इसे हम टाल भी नहीं सकते। बस इस सत्य से हम थोड़े दूर हैं। ये सत्य को हमें कभी ना कभी महसूस करना है, इस सत्य की ओर हमें कभी ना कभी जाना है। तो बस इस कहानी का अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा सच के साथ रहे, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, सत्य ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराएगा, सत्य से ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी और सत्य से ही हमें सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने सुनी एक हफ्ते की जिंदगी की कहानी और इस कहानी का हो गया है अंत। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, लेके आएंगे एक नई कहानी जिसमें होंगी कुछ मजेदार किस्से, कुछ कहानियां, कुछ शब्द, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेता हूं आपसे अभी विदा। अलविदा।

0: हेलो, मेरा नाम सुपर्णा कश्यप है और मेरे साथ आज है मिस मुक्ता जोशी। हम दोनों भी काउंसलर्स हैं। आज हम लोग एंटी बुलिंग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से रफली 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एक्सपीरियंस बुलिंग। एंड बुलिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है, वर्बल बुलिंग हो सकता है, फिजिकल बुलिंग हो सकता है, और आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो साइबर बुलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो होती है आजकल। तो मेरा पहला क्वेश्चन मुक्ता मैम आपसे ये है कि बुलिंग इंडियन कॉलेज में किस प्रकार में दिखाई देता है?
1: थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुलिंग शब्द सुन के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। वैसे तो वो बड़ी है बट वो कभी कभी दिखने में उतनी बड़ी नहीं होती। जैसे हमने देखा है थ्री इडियट्स मूवी देखा है या मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है, उसमें कैसे हमें रैगिंग दिखाई जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वैसा होता है तो उसको ही हम बुलिंग बोल सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। बुलिंग एकदम छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, राइट? इसको भी हम बुलिंग के अंतर्गत ही लाते हैं। तो कोई किसी का बोलने का तरीका होता है, किसी कोई कहाँ से आया हुआ है जिनका नेटिव विलेज कहीं और है, उसका मजाक उड़ाना, कास्ट का मजाक उड़ाना, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, उसका मजाक उड़ाना, ये बेसिक चीजें हैं जो बुलिंग के अंतर्गत आती है। हमें ऐसा लगता है ये तो क्या है, ये तो एकदम छोटी चीज है, एक दूसरे को चिढ़ाना तो नॉर्मल है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये चीज जब बार बार होती है हमें लगता है हम अकेले हैं जो ये कर रहे हैं, बट एक इंसान के लाइफ में बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज उसके लिए करते हो, तो उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो हम उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं लेकिन वो हिस्सा भी बहुत बड़ा बन सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे के बारे में गॉसिप करना, किसी को ग्रुप से अलग करना, उनको आइसोलेशन में रखना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उनको पार्ट नहीं लेना, जानबूझ के उनको नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए मेरे ग्रुप में ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की एक्टिंग करना, ये जो सारी चीजें हैं एकदम सिंपल एग्जांपल्स है बुलिंग के जो हो सकते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो, जो हमें लगता है हम चिढ़ा रहे हैं, बट वो भी बुलिंग के अंतर्गत आता है, वो भी साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमें दिखते हैं यूजुअली कॉलेजेस में। हमें लगता है सब हंसी मजाक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बुलिंग कभी भी ना मजाक नहीं होता। मतलब वो हमारे लिए शायद मजाक होता है जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे, लेकिन जिसका मजाक उड़ रहा है उसके लिए वो कभी भी मजाक नहीं होता। हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हो सकता है ऐसे। और दूसरी चीज ऐसे है कि बुलिंग तब होता है जब कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है किसी और को, सामने वाले को, अपनी अथॉरिटी जताना चाहता है, मैं कैसे सबसे बेहतर हूँ, मैं कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इन चीजों को दिखाने के लिए ज्यादातर बुलिंग देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये बुलिंग सिर्फ फ्रेंड्स में हो या पियर्स में हो, ये बुलिंग कभी कभी ऐसा भी होता है हायर अथॉरिटी के लोग भी लोअर अथॉरिटी के लोगों पे बुलिंग कर सकते हैं। तो बुलिंग अलग अलग तरीके का होता है जैसा मैंने अभी बताया। हमारे इंटेंशंस क्या है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे एक्शंस क्या है उस पर हमें ध्यान देना होता है। तो वही मुझे लगता है कि ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए ये हमें दिखता है अक्सर कॉलेज में होते हुए।
0: जैसे कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताया कि रैगिंग जो एक बहुत हाई लेवल में होता है वर्सेस जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो रोज होती है जिनको हम बहुत इजीली अनदेखा भी कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी बुलिंग के अंडर आती है। और जब कोई एक्सपीरियंस करता है बुलिंग तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है?
1: कई बार मैंने ना लोगों को बोलते हुए सुना है, बच्चों को बोलते हुए सुना है कि ये ना ज्यादा ही दिल पे ले लेती है, या फिर ये ना ओवर थिंक करता है, ये क्या छोटी सी बात है, इसके बारे में क्या इतना सोचना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बुलिंग अभी हम बात कर ही रहे हैं तो हम काउंसलर्स हैं, अब हम बुलिंग के बारे में बात क्यों ही कर रहे हैं, तो ये सवाल मुझे काफी अप्रोप्रिएट लगता है कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। और हाँ जरूर होता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुलिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा चिढ़ाना हो गया, वो एक बैड मेमोरी है शायद किसी के लिए, बट ये कभी भी ना सिर्फ बैड मेमोरी नहीं रहती है, वो दिल पे लगता है। और जैसे मैंने बोला कि जब वो बार बार होते रहता है तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे, किसी के भी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इतना सोचना, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना, अपनी आइडेंटिटी को जिस तरीके से लोग हमें पुकारते हैं उस तरीके से बनाना, अगर कोई किसी को यार तू तो बहुत पतला है बोलते रहेगा तो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, मैं मतलब मेरे में कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, राइट। तो वो आइडेंटिटी बन जाना। ये भी देखा गया है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस उसकी वजह से लूज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑल्दो वो एक छोटी सी चीज लोगों को लगती है, वो इस इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बहुत बच्चों ने हमें ऐसा अभी तक बताया है कि वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग उनके बात करने के तरीके पे हंसेंगे। आप इमेजिन करो कि कोई इंसान जिसको सब पता है, इंटेलिजेंट है, बट वो क्लास में बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उससे भी बहुत बड़ी बात ये होती है कि लोगों को, चलो अभी उनको पता है कि उनको बुरा लग रहा है, उनके साथ बुलिंग हो रहा है, बट उसके बारे में बात करने में भी उनको शर्म आती है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है मेरे बारे में। तो वो ना किसी से बात कर पाते हैं, ना खुल पाते हैं उसके बारे में, कुछ शेयर कर पाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर रह के घुटन जैसे होने का भी चांसेस होता है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपको बुलिंग से आपके ऊपर कोई परिणाम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। बुलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इंसान हो और हर इंसान को बुलिंग की वजह से तकलीफ होने के चांसेस है।
0: तो एक जो चीज आपने बताई कि जब एक कमेंट बार बार किसी को बोला जाता है, उनकी पूरी पहचान ही उस एक चीज में रह जाती है, बाकी अचीवमेंट्स भी कुछ रहेगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और ये फिर बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इन चीजों से कोप करना कि कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को सपोर्ट दे, कैसे हम इस चीज से उभर के आए। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को सपोर्ट करें इस सिचुएशन में?
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हमें ऑफकोर्स किसी भी इंसान को, हमारे कम्युनिटी का, हमारे आसपास के लोगों का सपोर्ट जरूरी होता है। तो जब मैं ये सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही उस पर काम करना है, लेकिन अगर हमारे साथ बुलिंग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे ख्याल रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे जरूर बता सकती हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि ये आपकी गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान को बुली किया जाता है उनको लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये समझिए कि कोई भी बुलिंग डिजर्व नहीं करता, ना आप ना कोई और, राइट। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सैड, एंग्री, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो तो वो भी बहुत नॉर्मल है। अपने इमोशंस को रोकिए मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मजाक है, तुम्हें इतना क्या हो रहा है, इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है, और हमें लगता है कि हाँ हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और हम अपने गुस्से को अंदर दबा देते हैं और वो इमोशन दबाने की वजह से और ज्यादा अंत में उभर के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके बारे में किसी से बात करो, जो भी, जिस इंसान को भी आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो। आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बात जरूर करो। आपका जो इमोशनल एक आपको लोड फील होता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा कम होने में उससे मदद हो सकती है। तीसरी जो चीज है, अगर आपके साथ होने वाले बुलिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, उसको लिख के रखते हो कि ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, किसने किया था, सिचुएशन क्या था, तो अगर आप कभी आगे जाके कंप्लेंट करना चाहते हो, इसमें ये चीज बहुत काम आ सकती है कि आप उसको कंप्लेंट भी आगे रेज कर सकते हो। हर कॉलेज में कंप्लेंट रेज करने का तरीका होता है, कहीं भी देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो आप उस पर कंप्लेंट रेज कर सकते हो। फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका ढूंढना। मुझे पता है कि ये बहुत आसान नहीं है, और जब कोई ऐसी चीज हो रही होती है, स्पेशली आपके साथ बुलिंग हो रहा होता है, तो उस समय हम अपने आप को डिफेंड करना, उतनी ताकत लाना उतना मुश्किल है, लेकिन अगर आप में वो ताकत आती है, आप ला पाते हो, तो जरूर अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। सामने वाले को सीधे बताइए कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे पता है कि उसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो परिणाम अगर आपको लगता है कि आप भुगतने के लिए ठीक है आपके लिए, तो आप ये जरूर कीजिए। सामने वाले को ये बताइए कि ये ठीक नहीं है, मैं ये सह नहीं सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत दुखद है, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बताने से एटलीस्ट ये जायज होता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप इस चीज को रोक पाओ, और आगे जाके अगर कोई बोलता है कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने ऐसा किया, तो तब आपके पास एटलीस्ट ये है कि आपने बोला है लेकिन फिर भी वो रुके नहीं है। फाइनली अगर आपके कॉलेज स्कूल कैंपस में कोई सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे कुछ कॉलेजेस में एंटी बुलिंग कमिटीज होते हैं, एंटी रैगिंग कमिटीज होते हैं, तो ऐसे कमिटीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने लोग ढूंढो जो अपनी बातें सुनते हैं, है ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड फाइनली अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, हो सकता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, तो एक कुछ भी नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हमारा ख्याल रखने के लिए एटलीस्ट हम एक जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। कोई लोग वॉक के लिए जाते हैं, उनका मन शांत होता है, कोई लोग जर्नल करते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं अपने ख्याल, अपने इमोशंस अलग निकालते हैं बाहर, मेडिटेशन करना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं उनके पास भी जाने का एक ऑप्शन हो सकता है। और ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, हर कोई जिंदगी में स्ट्रगल करता है, लेकिन आप जब हेल्प मांगते हो या किसी से हेल्प लेते हो, वो आपको स्ट्रांग बनाता है, तो बिल्कुल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं है।
0: थैंक यू मैम, ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आगे रखी कि हेल्प मांगने से आपको कोई कमजोर नहीं बनाता है, तो ये एक बहुत जरूरी मैसेज है जो हम आज पहुंचाना भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। और एक और चीज, जैसे आपने बताया कि सपोर्ट का जिम्मेदारी उस इंसान पे नहीं होना चाहिए जो बुली हो रहा है, ये एक कम्युनिटी जैसी एनवायरनमेंट हमें तैयार करनी है कि जहां हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें जो बुली हो रहा है, हम उसको कैसे सपोर्ट करें?
1: कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं क्या ही कर सकती हूँ, और यही जो सोच है वो हमें कुछ करने से रोकती है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप छोटा सा भी स्टेप लेते हो तो वो भी एक सपोर्ट के तरीके से एक इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब बुलिंग हो रहा है तब जाके झगड़ा करना, इतने बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि बस अगर कोई बुली हो रहा है तो बाद में जाके उनको उनसे बात करना, उनको बताना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। इतनी चीजें सिर्फ उनको बताना और उनको ये महसूस कराना कि उनके साथ भी कोई है जो उनको सपोर्ट करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। प्राइवेटली उनके साथ जाके एक बार चेक इन करना कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये चीजें पूछना, इनसे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं और उनका उसमें कोई ओपिनियन है, वो आपको कहानी बता रहे हैं कि आप उनके साथ क्या हुआ, तो उसको बिना जज किए सुनिए। उससे क्या होता है कि हम ना थोड़ा क्या, हमें ऐसा लगता है कि हमें सही या गलत में जाना चाहिए, सच या झूठ में जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। वो इंसान को आप सिर्फ सुनोगे एकदम शांत मन से बिना किसी जजमेंट के, तो वो भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अगर आप इतना कर सकते हैं कि अगर कोई बुली कर रहा है और उस बुली को आप साइलेंट कर सकते हैं, वही के वही बोल सकते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, या फिर यार दूसरों का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है, ऐसे अगर आप उन बुली को भी बता सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बोला कि आप जाके एकदम झगड़ा शुरू कर दो। सिर्फ वो सिचुएशन जब हो रही होती है उसको बीच में तोड़ना, उसको इंटरप्ट करना, उतना ही अगर आप कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुली हो रहा है तो उनको बोलना कि अरे छोड़ना, चल मेरे साथ चल, ऐसे बोल के उनको वहां से लेके जाना ताकि वो और आगे बुली ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये समझना भी जरूरी है कि जो बुली कर रहे हैं वो भी कभी कभी अपने ही खुद के मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, उनको भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तो कई बार कन्फ्रंटेशन के जगह वो सिचुएशन को काम करना ज्यादा असर करता है। तो इस ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम या हम कोई भी अपने आसपास अगर बुलिंग हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकता है।
0: एक बस जो एक वो फीलिंग होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, ये एक चीज ही बहुत ज्यादा ताकत दे सकती है हमें किसी भी चीज से गुजरने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के चलते हम कॉलेज में एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड करें जहाँ पे बुलिंग को हम नो ऐसा हम कर सके कि नहीं ये करना ही नहीं, और हम एक कॉलेज के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं।
1: इमेजिन करो यार कि एक कॉलेज जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कम्युनिटी बनी है जहाँ बुलिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो जब मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ तो मुझे, और मैं बोलती हूँ कि ये एकदम आइडियल है, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम अभी से शुरू कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? बेसिक एकदम छोटी छोटी चीजों से, जैसे क्लास में आप किसी को मिलते हो तो उनको हेलो बोलना, आप कॉरिडोर में चल रहे हो तो कोई भी सामने दिखता है, आंखों में आंखें मिलती है तो एक दूसरे को हेलो बोलना, ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, टीचर्स को ग्रीट करना, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ग्रीट करना, राइट? कोई नया स्टूडेंट आया है कॉलेज में और पहले उनके कोई दोस्त नहीं है तो उनके साथ जाके बैठना, उनको इंक्लूडेड फील कराना, रादर देन कोई और आके उनको बुली करना शुरू करे, उसके पहले ही हम जाके उनको इंक्लूडेड फील करा सकते हैं। तीसरा है कि कोई अगर अपने आप को सबके सामने लाके कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, किसी चीज में भाग ले रहा है, तो उनको अप्रिशिएट करना, वो भी एक बहुत, हमें लगता है कि वो ये कौन करता है ऐसे, पर वो करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है उस इंसान के लिए। किसी को कोई पढ़ाई का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनको वो समझाना, ऐसे छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं उससे भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे एक की वजह से क्या होगा, हमारे एक की वजह से और लोग इंस्पायर होके सिमिलर बिहेवियर ला सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम अपने कॉलेज के लिए छोटी छोटी चीजों के थ्रू ला सकते हैं।
0: और जैसे आपने बोला ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज के इसमें सोचते हैं क्या ही हो जाएगा करने से, क्या फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही है जो आगे जाके फर्क लाएंगे. सो एनी फाइनल थॉट्स मैम टू कंक्लूड दिस?
1: मुझे लगता है कि कोई भी छोटा महसूस करे ये हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि अगर हर किसी के पास बदलाव लाने की पावर है तो हम उस पावर को यूज करेंगे. तो काइंड रहिए एक दूसरे के साथ. चेंज आ सकता है, इसके लिए आप रेडी रहिए, उसके उसमें बिलीव कीजिए. कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलिए. कोई अगर स्ट्रगल करते हुए आपको दिख रहा है तो उनको मदद का हाथ बढ़ाइए. इसी से हम अपनी कम्युनिटी एक सेफ कम्युनिटी बना सकते हैं जहां पे इंसान आराम से सांस ले सकता है और एंजॉय कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है. तो बाकी की चीजें उसके बीच में ना आए. हर कोई मदद और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है. तो यही मेरे लास्ट थॉट रहेंगे.
0: थैंक यू मैम. थैंक यू समय निकाल के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने के लिए. एंड थैंक यू आचार्य 90 FM हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए.
1: और अगर कोई भी

ना ऐसी मेरी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे मेरे अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छिप जाऊं ऐसे मेरे अंदाज नहीं, क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? वही आप सब आचार्य 98.5 योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 98.5 के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5-10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तक्कू इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तक्कू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है। वैसे कैरीचा तक्कू ये रेसिपी 5 स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना 5 स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तक्कू से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 98.5 और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तक्कू इस महाराष्ट्रीयन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तक्कू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तक्कू बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को, ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5-10 मिनट्स के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डाले और उसे चटकने दे, मोहरी तड़तड़ू दे चांगली। फिर उसमें मेथी दाना डालिए, अब हींग का खुशबूदार स्वाद भी ऐड कीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। याद रहे कि हमें इसे गर्म यूज नहीं करना। लगभग 5 मिनट के बाद उसे कैरी के मैरिनेट किए हुए मिश्रण पर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर गरम तड़के को तक्कू पर डाला तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि तड़का ठंडा करके ही यूज करें। एक और टिप, अगर कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तक्कू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 98.5 योर ओन रेडियो और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी ये एक सुपर फूड है।
सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। भाई हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बैरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड। इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिनहुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल, और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड्स स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए।

अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाए तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगिरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

हर दिल पर छाई जायके की पहचान है, संस्कार और शक्ति का संगम हो जहां, ऐसे सुरीले मंच पर आपका स्वागत, यही हमारी शान है। आचार्य 90FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। एप्पड़ी किरोइंगा, हाउ आर यू ऑल, कैसे आहत सगे? अरे भाई, ठीक होना ही चाहिए क्योंकि आप सब है आचार्य 90FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त, जिन्हें मिलकर हमें खुशी ही मिलती है। जब से आप पधारे हैं, महक उठा है स्वाद का जायका, घर आंगन ऐसा एहसास होता है जैसे भारतीय सीमा को आपने बनाया नायका। जोक्स अपार्ट, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो ओरिजिनली अमेरिकन है, लेकिन उसमें मैंगो ऐड करके हमने उसे देसी रूप दे दिया है। वैसे बच्चा पार्टी स्पेशल ये रेसिपी हम हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए खास बना रहे हैं। नॉन फायर टाइप की ये रेसिपी आप घर के बच्चों से जरूर बनवाइए। ईयर 1950 के दशक में मुंबई और दिल्ली में ये काफी फेमस रेसिपी थी। तो तैयार हो जाइए हमारी आज की रेसिपी को सुनने, जिसका नाम है मैंगो मिल्कशेक। एकदम टेस्टी और क्रीमी लगने वाला ये मैंगो मिल्कशेक दिखने में सुंदर है ही, लेकिन इसका टेस्ट भी एकदम सुपर्ब है। सुपर से ऊपर है। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पके हुए अल्फोंसो मैंगोज 2, इन्हें धोकर छील ले और छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ठंडा दूध 2 कप, शक्कर 2 चम्मच, बर्फ 2-3 टुकड़े, वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप्स, सोक्ड मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1 चम्मच या मिल्क मसाला भी आप ले सकते हैं 1 चम्मच, और ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम मैंगो मिल्कशेक की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सी के जार में आम के टुकड़े, बर्फ, दूध, शक्कर और वनीला आइसक्रीम डालिए। इसमें ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। अब इस मिश्रण को एकदम स्मूथ और क्रीमी होने तक मिक्सर में घुमाइए। लगभग 2 से 3 मिनटों में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब इसे सर्विंग ग्लास में निकालिए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या मिल्क मसाला डालकर इसे सर्व कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। शक्कर के बदले आप हनी मींस शहद को यूज कर सकते हैं। ओरिजिनली अमेरिकन रेसिपी को हमने आम काटकर एकदम खास इंडियन स्टाइल से बना दिया है। इसका क्रीमी टेक्सचर, मीठी खुशबू और अपनापन आपको आम का खास एहसास जरूर कराएगा। वैसे समर वेकेशन में हमारे नन्हे ऑडियंस ये नॉन फायर और क्विक रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप इसे जरूर बनाइए और मैंगो मूड एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90FM योर ओन रेडियो। आज हम बात करेंगे भगवान चंद्र की मींस मून की। वैसे चांद का मतलब ठंडक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार चंद्रदेव का वाहन 3 पहिए वाला एक रथ है। इस रथ में 10 बलवान घोड़े जोड़े हुए हैं। ये सब घोड़े सफेद रंग के हैं और इन सभी घोड़ों की आंखें और कान भी सफेद है। और खास बात यह है कि ये दिव्य घोड़े मन के समान वेगवान है, मतलब जैसे हमारा मन कैसे सोचता है फटाफट, वैसे ये घोड़ों का स्पीड है। भगवान चंद्रदेव का वर्ण गोरा है और इनके वस्त्र, रथ और घोड़े सब सफेद रंग के ही है। भगवान चंद्रदेव इस रथ में कमल के आसन पर विराजमान है। इनके सिर पर सोने का मुकुट और गले में मोतियों की माला, और इनके एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ वर यानी आशीर्वाद मुद्रा में है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? वैसे आप अपने चांद को कौन से नाम से पुकारते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90FM योर ओन रेडियो। वैसे आम का मीठा और रसीला स्वाद किसे पसंद नहीं? अक्सर हम आम से मिल्कशेक, आइसक्रीम, आचार ये सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आम को सुबह के नाश्ते में यूज करके हम हमारे दिन की शुरुआत को कैसे खास कर सकते हैं?
अब नाश्ते में हम कई चीजें खाते हैं, जैसे उपमा, पोहा, दलिया, सैंडविच, इडली, डोसा या फिर पराठा, राइट? तो आज हम बात करेंगे मैंगो पराठा रेसिपी की। ये एक ऐसी रेसिपी है जो टेस्टी और इनोवेटिव तो है ही, लेकिन ये आपके नाश्ते को भी एक नया ट्विस्ट देगी और गर्मियों के इस सीजन में स्वाद का जायका ऐड करेगी। तो पेश है आचार्य 90 FM के ऑडियंस के लिए मैंगो पराठा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: गेहूं का आटा 2 कप, नमक 1/2 छोटा चम्मच, गरम घी 1 चम्मच, पानी आटा गूंथने के लिए। ये हो गया पराठे के आटे का जरूरी सामान। अब इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए पके हुए आम का पल्प 1 कप, मींस लगभग 1 बड़ा आम, चीनी स्वादानुसार, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच चीनी ले रही हूँ, इलायची पाउडर 1 चुटकी भर। वैसे 1 चुटकी इलायची पाउडर की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू, स्वाद का जायका है 1 चुटकी इलायची पाउडर, खुशबू का भंडार है 1 चुटकी इलायची पाउडर। वेल, जोक्स अपार्ट, अब आगे की इंग्रेडिएंट्स सुनते हैं। सौंफ 1/2 चम्मच, घी पराठे सेकने के लिए। अब हम इसे बनाते कैसे हैं वो सुनते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और नमक मिलाइए, फिर उसमें थोड़ा गरम घी मिलाइए, मींस लगभग 1 चम्मच, फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंथ लीजिए। हमें आटा नरम गूंथना है, न ज्यादा सख्त न ज्यादा ढीला। फिर उस तैयार आटे को 15-20 मिनट्स के लिए ढककर रखिए, इससे आटा सेट हो जाएगा। अब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। एक मोटे बेस वाले पैन में मैंगो पल्प, शक्कर और इलायची पाउडर को मध्यम आंच पर पकाइए। इसे तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और इसका सारा पानी सूख ना जाए। जब इसका टेक्सचर जैम जैसे हो और ये पैन से अलग छूटने लगे, तब आप इसमें सौंफ डालिए। अब इस स्टफिंग को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब आप गूथे हुए आटे के नींबू के साइज के गोले बनाइए। हम आमतौर पर जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही तैयार सामग्री से मैंगो पराठा बनाइए, मींस आटे को थोड़ा सा बेलिए, फिर हल्के हाथों से उसमें तैयार स्टफिंग भरकर उसे

धीरे बेलिए। बी केयरफुल, अंदर की स्टफिंग बाहर ना आ पाए। फिर उसे मीडियम फ्लेम पर तवे पर सेकिए। जब वो पराठा दोनों तरफ से हल्का सा पक जाए तब उस पर घी लगाकर गोल्डन कलर आने तक पराठे सेकिए। फिर इन गर्मा गर्म पराठों को एक सर्विंग प्लेट में निकालिए। दही, आम का अचार या डायरेक्ट ऐसे ही आप इसे एंजॉय कीजिए। भाई, मैंगो पराठा बनाकर मैं तो थोड़ी थक गई। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए। मैं यूं गई और यूं वापस आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आरजी भारतीय सीमा और हमारे शो का नाम है स्वाद का जायका। आज हम बात करेंगे भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेस मींस पैरा एसएफ जवानों की। इंडियन आर्मी के सबसे एलीट और घातक कमांडो में इनकी गिनती होती है, जो अपनी क्रूर ट्रेनिंग और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। इस ट्रेनिंग में ड्रॉप आउट रेट 80% होता है। पैरा कमांडोज में सीधी भर्ती नहीं होती है, ये सिर्फ भारतीय सेना के मौजूदा सर्विंग पर्सोनल से चुने जाते हैं। इनका प्रोबेशन पीरियड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसमें विद इन 3 months पीरियड 80% से ज्यादा जवान ड्रॉप आउट होते हैं। ये कमांडो 30,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से कूदने में एक्सपर्ट होते हैं। टोटल 9 पैरा एसएफ को उनकी मैक्सिमम सीक्रेटिव ऑपरेशन के कारण घोस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। ये पैरा एसएफ जवान रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये स्मॉल ग्रुप्स बनाकर दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और वहां पर इम्पोर्टेंट टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें नाज है भारत के ऐसे वीर जवानों पर जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस की तरफ से हम सब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आरजे भारतीय सीमा। हम हमारे प्यारे ऑडियंस से अब पूछना चाहते हैं कि क्या आपने इंडियन मार्कोस मरीन कमांडोज के बारे में सुना है क्या? आज हम इंडियन नेवी सील्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इन जाबाज सैनिकों को मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडोज आकाश, धरती और जल कहीं पर भी दुश्मन को सिर्फ 27 सेकंड्स में खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिर्फ 27 सेकंड। इनकी मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग की वजह से ये आतंकियों के लिए यमराज माने जाते हैं। 2.5 से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1,000 में से सिर्फ एक सिपाही मार्कोस बन पाता है। इनकी खास बात ये है कि सी सरफेस से 55 मीटर्स नीचे 15 मिनट ये बिना ऑक्सीजन के लड़ सकते हैं। मार्कोस कमांडोज अपनी हाई लेवल फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और परफेक्ट टारगेट के लिए एकदम फेमस हैं। हम नमन करते हैं भारत माता के उन सपूतों को जो इतनी खतरनाक सिचुएशन को पार कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आरजे भारतीय सीमा। अब पेश है देशभक्ति पर छोटी सी कविता। कविता का नाम है मेरा देश। अपने देश की रक्षा करना केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं, देशभक्ति को मन में रखना ये बात है कितनी सही। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। सरहद की हर हद पर तुम हो, लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक हो तुम। लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक तुम हो। कभी कारगिल में रखवाली या हो मुंबई में गोलीबारी, और इन्हीं से अपने हुनर दिखाएं। अनोखा सा इनका काम का अंदाज, अच्छे से करते हैं दुश्मन का इलाज। चाहे हो रात घनी या हो भोर, सख्त इनका पहरा देश के चारों ओर। हर चप्पे पर सुरक्षा आपकी, जल धरती और आसमान, भारत की सुरक्षा में है आपका अमूल्य योगदान। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम। वैसे हमारे वीर जवान मीन सैनिक दिन रात देश की सेवा में जुटे हुए हैं। इनके शौर्य की कई कहानियां अनकही भी है, इसलिए कहते हैं कि राह संघर्ष की चलता है, वो जो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है।
भाई सूरज की चमक हरियाली में देखने का एक अलग सा मजा है, लेकिन हमारे आसपास के पेड़ अगर कम होते गए तो हरियाली कैसे दिखेगी भाई। लॉकडाउन के समय हमारे देश में कई अच्छी बातों की शुरुआत हुई, इसमें से एक है द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन वॉल इस नाम से ही पता चलता है कि ये नेचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये ग्रीन वॉल गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है। ये फेमस ग्रीन वॉल 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है।

लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही नहीं। खेती के कामों में मेहनत और खर्चा होता है और खेतों में की गई मेहनत के अलावा हवा और

इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा और ना पानी की कमी होगी, खेती करने लायक जमीन, जंगली जानवरों का रक्षण, ऐसे फायदे भी होंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी, जैसे कि जंगल सफारी, वनौषधि से रिलेटेड कारोबार वगैरह। वैसे आपने कभी किसी जंगली जानवर को नजदीक से देखा है क्या? यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम आपसे और भी बातें करेंगे। आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तब तक स्टे ट्यून्ड।

प्राची भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हरियाली जितनी ज्यादा होगी गर्मी उतनी ही कम होगी, फिलहाल जो है सो है। यहाँ हमारे आसपास कोई ग्रीन वॉल तो है नहीं, तो बेचारे पंछी और जानवर

जानवर करे तो क्या करे? यहाँ पर ना कोई नदी है, ना कोई तालाब या झरना। तो हम हमारे इन दोस्तों के लिए एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे? तो सुनिए, हम किसी कंटेनर में पानी भरकर किसी छांव वाली जगह पर उसे रख सकते हैं। हमारे घरों के आसपास जो फोर व्हीलर्स पार्क्ड की है उसके नीचे कुत्ते और बिल्लियां हांफते हुए छुप जाते हैं। अब बेचारे जाए भी तो कहां जाए? तो इनके पानी पीने का इंतजाम हम कर ही सकते हैं। अब सपोज आपने वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन खाया तो उसके छिलके के पास वाला उसका हिस्सा आप पंछियों को खिला ही सकते हैं। उसे क्यों कचरे में फेंकना? अदरवाइज डिहाइड्रेशन की वजह से बेचारे पंछी भी बीमार पड़ सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट पंछी कौन सा है?

मुझे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट पंछी कौन सा है। भाई फिलहाल तो मैंगो सीजन चल रहा है और गर्मियों में सुबह सूरज जल्दी उगता है। हर एरिया में सुबह कुहू कुहू की मधुर आवाज से लोग जग जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एशियन कोयल की। ये एक फेमस भारतीय पंछी है जो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। वैसे खास बात यह है कि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इतनी चालाक होती है कि वो उसके पहले कौवे के अंडों को नीचे गिराती है। ये पंछी दिखता तो है कौवे की तरह, लेकिन इसकी आंखें लाल रंग की होती है। इन्हें मोस्टली आम के पेड़ों पर देखा जाता है, वैसे जामुन के पेड़ों पर भी ये कभी कभार दिखती है। ये पंछी फ्रूट्स, कीड़े और कैटरपिलर को खाती है। केवल मेल कोयल ही वसंत के मौसम में मधुर कुहू कुहू की आवाज निकालती है। इनकी पूंछ कौवे से थोड़ी लंबी होती है। वैसे कोयल को भारत की कई भाषाओं में कविता में इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका से उड़कर ये पंछी हमारे भारत देश में आते हैं, माइग्रेशन करते हैं। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। किसी ने क्या खूब कहा है, फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुराकर जीना, कांटों से सीखिए कष्टों से उभरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमते रहना और शाखों से सीखिए दूसरों को सहारा देना। क्योंकि प्रकृति कभी अपनी ही दी गई वस्तुओं पर अहंकार नहीं करती, लेकिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब हमें सबक जरूर सिखाती है। जनाब, दुनिया की यही रीत है कि जो भी आप बांटते हैं वही चीज आपके पास बढ़ती है, चाहे वो धन हो या अन्न, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या प्यार। इसीलिए सोच समझ कर बांटिए, क्योंकि वही लौट कर आपके पास आएगा। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वही है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। अरे भाई, परेशानी जिंदगी का हिस्सा ही है। बगैर परेशानी इंसान की पर्सनालिटी निखार कैसे लाएगी, क्योंकि इन मुसीबतों से ही इंसान जिंदगी जीने का मतलब समझता है, है कि नहीं। और जब इन मुसीबतों को पार करके हम कामयाबी हासिल करते हैं तब हमें रुकना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष भी है, और जब तक संघर्ष है हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। कभी औरों की कामयाबी देखकर हम ये सोचते हैं कि ये इंसान कितना खुशनसीब है ना, लेकिन उस सफलता के पीछे कठिनाई से किया हुआ मुकाबला और बहुत सारी मेहनत भी होती है जनाब। एक बार सफलता मिलने पर हमें कुछ नया सीखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि लड़खड़ाना, गिरना और संभलना, इसी का नाम तो जीवन है और यही जीवन का नियम है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। न जाने क्यों आपसे मिलने के बाद आपसे ही मिलने की चाहत रहती है। स्वाद का जायका सुनकर दिल को चैन की राहत सी मिलती है। इस शो पर करेंगे खाने और गाने का इंतजाम। गौर फरमाइए हमारे शो पर, वरना बेरुखी का लगेगा आप पर इल्जाम। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। बिछड़ कर आपसे हमें कुछ और कहना नहीं, ये जुदाई परमानेंट नहीं, बस जल्द ही फिर से मिलना है। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला।

0: और इस शो के होस्ट आरजे एंकर कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारा आज की नारी ये सेगमेंट है, और हमारे ये आज की नारी सेगमेंट में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं साइमा किरमाणी मैम। सो साइमा मैम के बारे में बोलना चाहूंगी, तो सबसे पहले साइमा मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकलकर यहाँ पर आए।
1: थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: यस, सो साइमा मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आज हम देख रहे कि सभी फील्ड में हर एक वुमेन ने अपना खुद की पहचान बनाई है, वो अपने खुद के बलबूते पे खड़ी है, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग वो कर रही है। और साइमा मैम के बारे में मैं ऐसे ही कुछ आपको बताने वाली हूँ। साइमा मैम एक बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ साथ मैजिकल मॉम्स के वो फाउंडर एंड डायरेक्टर है। मतलब एक वुमेन्स ने वुमेन्स के लिए काम करना चाहा तो वो क्या कर सकती है, आज ये हमें पता चलेगा यहाँ पे ये इंटरव्यू में। सो इसके साथ साथ वो एक एंकर भी है, बहुत बड़े बड़े शोज वो होस्ट भी करते हैं, खुद इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग ये सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का भी हम कुछ ऐसे कि कभी कभी हमें कभी जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। तो यही बात को मद्देनजर रखते हुए मैम बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है, सो स्पेशली फॉर गर्ल्स और वुमेन्स, उनके लिए मैम का बहुत सारा काम रह चुका है। सो ये आज का जो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर दो एंकर साथ में आते हैं तो क्या होगा, क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट मैम, सबसे पहले ये बताओ कि कैसे हो आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी, और यू नो यू आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलके। और सी, जब हम सेम फील्ड में होते हैं तो बहुत खुशी होती है अंदर से देखकर। सो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।
0: ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि ये एक ऐसे फील्ड है कि बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हमारी लड़की ये फील्ड में क्यों जाएगी, अगर हमारी लड़की आगे जाएगी तो वो कुछ साइंटिस्ट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। लेकिन ये फील्ड आपने कैसे चूज किया, मतलब इट्स रिलेटेड टू मीडिया वर्ल्ड, ओके, सो ये कैसे आपने चूज किया?
1: सी यू नो, अभी आपने बोला कि पेरेंट्स हमारे क्या चाहते, तो मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं, बिकॉज माय फादर वाज अ टीचर, एंड वो चाहते थे कि मैं भी एक टीचर बनूं। आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर, एंड देन मैंने PhD स्टार्ट किया, बट आफ्टर थ्री फोर मंथ्स आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये टीचिंग लाइन मेरे लिए आई गेस नहीं बनी है। सो आई क्विट एंड आई डिड माय MBA। MBA करने के बाद में मुझे मैंने जॉब स्टार्ट किया, एंड यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग तो मुझे लगा कि हाँ, यू नो दिस इवेंट वाला फील्ड जो है वो शायद मेरा पैशन है।
0: वाओ,
1: सो स्लोली आई स्टार्टेड, एंड आई गॉट मैरिड, एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से फिर मैं इधर आई। हस्बैंड वाज लाइक के जॉब नहीं करना है, बिकॉज लास्ट 15 ईयर्स से मैं जॉब कर रही थी। सो हस्बैंड ने बोला नहीं, अभी जॉब नहीं करना है, अभी यू नो आराम करो घर पर। सो आई क्विट माय वर्क, चलो ठीक है, शादी के बाद हम यू नो वी वुमेन बहुत सारे सेक्रीफाइस हमें करने होते हैं। सो आई डिड, मैंने भी कर दिया, बट घर में रह के रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब घर में रह के अपनी यू नो क्वालिफिकेशन, अपना टैलेंट, वो सब वेस्ट हो रहा है मेरा घर में।
0: एग्जैक्टली,
1: और उसी दौरान मैंने आसपास की बहुत सारी लेडीज को देखा जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनके पास वो ड्रीम है, कैपेबिलिटी है
0: या कुछ करने का,
1: एंड वो नहीं कर पा रहे हैं मेरी तरह, या कुछ और कुछ और भी रीजंस होते हैं उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनका करियर ओरिएंटेड नहीं है, बट वो लाइफ में एंजॉय करना चाहती है, स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आना चाहती है, बिकॉज हमारी लाइफ एक सर्कल में हो जाती है, सुबह मॉर्निंग हस्बैंड का टिफिन, बच्चों का टिफिन, ये घर के काम, ये वो, बस उसी में हम रहते हैं। तो वो सारा मैंने देखा, एंड मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि ऐसे मैं फ्री तो नहीं रह सकती हूँ, सो मैं कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ तो करूँ। आई स्टार्टेड एग्जीबिशंस, सो उसमें बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ मैंने ज्वाइन कराया कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, हम लोग एक सपोर्ट करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो सभी मिलके ग्रो करेंगे। आई स्टडीड एग्जीबिशन, बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ में धीरे धीरे कारवा बनता चला गया, जोड़ते चले गए. देन आई गॉट प्रेग्नेंट. सो प्रेगनेंसी में एग्जीबिशंस वगैरह करना पॉसिबल नहीं था, एंड उसी के दौरान मुझे लगा कि इन फीमेल्स को मैं एक प्लेटफॉर्म कैसे दूं जिसमें ये एंजॉय भी कर सके, अपना ग्रोथ भी कर पाए और यू नो लाइफ में आगे भी बढ़ पाए. देन आई स्टार्टेड मैजिकल मॉम्स. मैजिकल मॉम्स इज लाइक माई बेबी, मेरा ड्रीम
0: बेबी,
1: फर्स्ट बेबी एक्चुअली, वो मेरा ड्रीम है. एंड मैजिकल मॉम्स में हम सब करते हैं, आई मीन स्पेसिफिक ऐसा नहीं एक ही चीज के लिए, आई मीन हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, या हमें जैसे भी एक दूसरे की जरूरत है, वी आर देयर फॉर ईच अदर. एंड सेकेंड थिंग, उसमें जो पार्टीज भी करते हैं हम लोग कि स्ट्रेस उस लाइफ से थोड़ा सा निकलो, मी टाइम निकालो थोड़ा, और वहां अच्छे से 3-4 आवर्स सिर्फ अपने लिए जियो. उसके बाद में हम लोग सोशल वर्क करते हैं, सोशल एक्टिविटीज, लाइक बहुत सारी फीमेल्स है जो अवेयर नहीं है, हेल्थ से अवेयर नहीं है, हाइजीन से अवेयर नहीं है. बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको करियर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है, उनको हम वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं कि चलो आप ब्यूटी यू नो ब्यूटिशियन वाली लाइन में जा सकते हो, चलो हम आपको वो सब अरेंज करा के देंगे, अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनको, यू नो फैशन वाली लाइन में जाना है उसमें जाएंगे. उसके अलावा मैजिकल मॉम से हम लोग यू नो वी फेलिसिटेट यू नो दिस जो इंस्पिरेशनल वुमेन है जो लाइफ में बहुत कुछ कर रही है, हमारे लिए, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, उनके लिए हम अवार्ड फंक्शन रखते हैं और उनको वहां बुलाकर फेलिसिटेट करते हैं. बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो यू नो सर्वाइवर है, उसके बाद में भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है.
0: एग्जैक्टली,
1: यू नो एसिड सर्वाइवर्स है, कैंसर सर्वाइवर्स है, उनको देख के ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, दे आर द रियल फाइटर्स, वो लाइफ में सीरियसली कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए हम अवार्ड फंक्शन करते हैं. ऐसे ही धीरे धीरे धीरे मैजिकल मॉम स्टार्ट किया, कुछ फीमेल्स का ग्रुप बनाया कि चलो हम कुछ करते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट सबको बहुत पसंद है. व्हेन आई स्टार्टेड बहुत हार्डली ग्रुप थे, बहुत हार्डली इस तरह की कम्युनिटी ग्रुप थे, और अब तो काफी सारे हो गए हैं मेरे यू नो मैजिकल मॉम्स के बाद में मैंने रिसेंटली देखा काफी छोटे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, एंड इट्स गुड, हम सभी के लिए वो बहुत अच्छा है. और उसके बाद में जैसे मैजिकल मॉम्स आगे चलता गया है, एंड टचवुड आज बहुत ग्रोथ कर चुका है,
0: बहुत ज्यादा,
1: एवरीबॉडी नोज अबाउट मैजिकल मॉम्स कि हाँ हम मैजिकल मॉम्स वाली जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, वो मतलब कुछ कर रही है लाइफ में.
0: यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि ना वो सबसे पहले तो वो नाम ही बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है. यू नो वो फील होता है जब आप ये नाम सुनते हो कि मैजिकल मॉम्स, एक हर एक मॉम के अंदर, हर एक माँ के अंदर एक मैजिक है, और वो नाम ही इतना प्यारा है, मैजिकल मॉम्स. सो बहुत अच्छा लगा ये नाम ही सुन के. शायद मे बी आप भी वो फील्ड में वो टाइम पे उसी इसमें से गुजर रहे थे, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये अच्छा खासा नाम आपको.
1: यस ऑफकोर्स, जब आप वो चीज फेस करते हो उस चीज को अच्छे से समझ पाते हो.
0: एग्जैक्ट,
1: वो अगर मैं कोई पेन में हूं तो मैं आपका पेन वही सेम पेन समझ सकती हूं, मैं खुश हूं तो वो सेम आप खुशी में है तो मैं वो समझ पाऊंगी यार आई एम हैप्पी, ये इसीलिए इतना खुश है. वो मैंने समझा कि हाँ, और वो फीमेल्स यू नो वुमेन मैजिकल मॉम्स से जुड़ने के बाद में बहुत चेंज हो गए, यू नो खुशी मिली उनको, लाइक न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म मिलता है अपने एक्सप्लोर करने के लिए, अपने यू नो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए
0: आइडियाज
1: शेयर होते हैं, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है. और इवन जो एक्सपीरियंस मॉम्स है, कोई एज ग्रुप नहीं है इसमें कि सिर्फ यंगस्टर्स ही यहाँ रहेंगे, यू नो यंग्स भी हैं और एकदम यू नो एजड भी हैं, वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं लाइफ के, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो वो एक अच्छा कम्युनिटी में मजा आता है.
0: एग्जैक्टली. और ना जैसे कि आपने वर्ड यूज किया कि मी टाइम, हम लोग बहुत सारे वुमेन्स ऐसे, बहुत सारे औरतें ऐसे होते हैं कि ना कि फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, उनका करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, और जो एक स्पेशल ये रहता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरे लिए खुद के लिए भी जीना है कि मेरी क्या पहचान है. और मुझे लगता है कि मैजिकल मॉम यही काम कर रहा है, एक खुद की अलग पहचान बना रहा है, अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दे रहा है सभी वुमेन्स को. सो ये तो हुआ कि मैजिकल मॉम की शुरुआत हुई, लेकिन कोई भी स्टार्टअप जब हम करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं. कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे आजू बाजू में ही ऐसे लोग होते हैं कि जो एक्सेप्ट नहीं करते इजीली. सो आपने जब ये शुरुआत किया मैजिकल मॉम्स की, जब ये स्टार्ट हुआ, तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया और फिर कैसे आ गया है?
1: आते हैं बहुत सारी डिफिकल्टीज, हर फील्ड में आते हैं. सो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं यू नो फीमेल्स का अलग से कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. मीन्स उसमें हम पार्टीज भी करते थे, तो पार्टीज करते थे फीमेल्स की पार्टीज हो रही है तो कुछ लोग मतलब सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता था क्यों इस तरह की पार्टीज कर रहे हैं. बट जब लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वॉट इज द कॉन्सेप्ट, ये मैजिकल मॉम्स क्या है और हमने क्यों बनाया, जस्ट सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं बनाया, ये लोगों को यू नो पीस भी दे रहा है, एक सुकून दे रहा है जिस स्ट्रेस में वो है या डिप्रेशन में. कितनी सारी मैजिकल मॉम्स में लेडीज स्टार्टिंग में ऐसे जुड़े जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन फेस कर रहे थे. जो आपने अभी बोला कि हम फैमिली में बिजी हो जाते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. सी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक यू नो एक फैमिली है, एक फीमेल है, उसका बेबी है एक छोटा, एंड अगेन शी इज प्रेग्नेंट, वो वर्किंग भी है साथ में. तो वो एक इमेजिन कीजिए कि मतलब उसको देख के लगता है कि Pressure. नहीं एक औरत से ज्यादा किसी में स्ट्रेंथ है ही नहीं. आई मीन मॉर्निंग उठ को बच्चे का टिफिन है, हस्बैंड का टिफिन है, इन लॉज का सब तैयारी करके जाना है, फिर ऑफिस जाना है और काम पे से आने के बाद फिर काम पे आना है, अगेन डिनर तैयार करना है और वो कल का स्ट्रेस, तो उसमें उनको टाइम नहीं मिलता है. उसमें से वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि क्या करें. तो 2-3 आवर्स महीने 2 महीने में हम उनको देते हैं, आज हमारे साथ स्पेंड करो, हम यू नो अच्छा यू नो हंसते हैं खेलते हैं, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको बाहर निकालते हैं.
0: एग्जैक्टली एक्चुअली ना यही हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हमारे लाइफ में. और मुझे लगता है मैजिकल मॉम एक रीजन हो सकता है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का, मुस्कुराहट लाने के लिए.
1: मेरा एम भी है, यू नो मुझे अच्छा लगता है, यू नो आई लव वेन मेरी वजह से लोगों को मुस्कुराहट मिलती है, लोग खुश होते हैं. आई एम ब्लेस्ड कि हाँ मैं बहुत सारे लोगों को खुशियां दे पा रही हूँ.
0: एग्जैक्टली. और ऐसे होता है ना कि जब हमारे घर की औरत ही खुश है तो डेफिनेटली उसका पूरा घर हैप्पी रहेगा,
1: एटमोस्फेयर ही चेंज हो जाता है.
0: यस, चेंज हो जाता है. सो मैम, मैजिकल मॉम्स की शुरुआत हुई तब मैजिकल मॉम्स के अंडर आपने बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए. हर एक इवेंट में हर एक वुमन रहे, चाहे लड़की हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म बनाया. तो मैजिकल मॉम्स के अंडर कौन से टाइप के इवेंट्स आपने किए या फिर आप अभी भी कर रहे हो?
1: अभी भी कर रहे हैं. मैजिकल मॉम्स में हम यू नो किड्स के लिए भी करते हैं, यू नो मॉम एंड मी, यानी अपने बच्चे के साथ आपको प्लेटफॉर्म दिया हमने, आपको वहां परफॉर्म करना है. आई मीन कुछ किड्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो मदर के सपोर्ट से आ जाते हैं स्टेज पे. कुछ मदर्स इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको ख्वाहिश है स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिले और हम वॉक करें या ऐसा परफॉर्म करें, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो किड्स के साथ में आ जाती हैं, तो वो एक डियो बन जाता है, उनको मजा आता है. फिर उसके बाद में हम लोग किड्स के लिए, स्पेशली किड्स के लिए, तो बहुत सारे मदर्स का कैसे रहता है, एक ड्रीम रहता है मेरे बच्चे जो मैं नहीं कर पाई हूँ मेरे बच्चे
0: करे. हाँ,
1: तो उनकी खुशी खुद को परफॉर्म ना करके बच्चों में होती है, तो हम किड्स के लिए यू नो इवेंट्स करते हैं ताकि वो मदर्स अपनी यू नो खुशी ढूंढ पाए उसमें. इसके अलावा सशक्त नारी अवार्ड, जो मेरा सबसे यू नो फेवरेट इवेंट है मैजिकल मॉम्स का, एंड उसमें बिकॉज उसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, सशक्त नारी, एंड वी वुमेन आर स्ट्रांग, वी ऑल वुमेन आर स्ट्रांग. कहीं ना कहीं हर औरत में अंदर की एक अपनी एक स्ट्रेंथ है, सबकी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है. तो हम ये नहीं कह सकते जो वर्किंग है वही ज्यादा यू नो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है. जो घर में हाउसवाइफ भी हैं उनका पार्ट अलग है, हमारा पार्ट अलग है, हमारे सेक्रीफाइसेस अलग है, उनके सेक्रीफाइसेस अलग है. तो सशक्त नारी अवार्ड में हम उन फीमेल्स को फेलिसिटेट करते हैं, अवार्ड देते हैं, जो वाकई में हम यू नो एक हम सबके लिए एग्जाम्पल है, सेट कर रही है कि यस औरत में एक यू नो स्ट्रेंथ है, वो
0: आइडियल
1: आइडियल है हमारे लिए, हम सबके लिए एक यू नो इंस्पिरेशन है. उनको हम फेलिसिटेट करते हैं, वो मेरा यू नो सबसे फेवरेट प्रोग्राम है इसका. मैं
0: एकदम दिल के करीब
1: और अच्छा लगता है. आई मीन समटाइम्स आई क्राई, मुझे देख के रोना भी आता
0: है. आई नो, मैंने एक इवेंट में देखा था,
1: देयर वाज अ यू नो एसिड सर्वाइवर, हस्बैंड ने पूरा एसिड डाल के यू नो पूरा बर्न कर दिया, बच्चे भी हैं दो, स्टिल मतलब शी इज फाइटिंग, और वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना पढ़ाना, और वो शी इज वर्किंग, उसी हाल में वो जॉब कर रहे हैं, देखो काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं. एक आपने देखा होगा मेरे शो में, एक ये थे म्युनिसिपैलिटी के वो वर्कर थे
0: वर्कर,
1: और सरप्राइजिंगली कि उनका एक बच्चा सीए है यानी डॉक्टर है, एक यूएस में, एक कनाडा में, मतलब क्या उन्होंने कितना हार्डवर्क किया और किस ड्रीम के साथ अपने बच्चों को पढ़ा किया।
0: एग्जैक्टली
1: तो वो है हकदार है इस तरह के अवार्ड्स के कि हाँ उनको दिया जाए। हमारे लिए आइडियल है कि बहुत सारी लेडीज के लिए आइडियल है कि हम कुछ कभी ऐसा था सिंगल मदर्स होते हैं तो मॉरल डाउन हो जाता है कि हम क्या करेंगे, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि हमें यू नो लाइफ इज अनसर्टेन, हमारी हर सिचुएशन ही अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला पता नहीं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो उस फंक्शन में हम उसी तरह के लेडीज को इन्वाइट करते हैं, बिजनेस वुमेन्स को इन्वाइट करते हैं जो घर भी संभाल रही है और बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, और हमारी यू नो फैशन इंडस्ट्री में यानी घर में एकदम हाउस वाइफ है और घर में रहती है, बच्चा संभाल रही है, घर संभाल रही है, जो हमारी यू नो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, हर एक औरत की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली
0: फैमिली,
1: वो हमें इंटरनल खुशी देती है कि हाँ हमें वो तो सबसे करना ही है, लेकिन उसके बाद में हमारे खुद के भी कुछ पैशन होते हैं वो, तो बहुत सारी ऐसी हैं कि घर भी संभाल रही है और फैशन इंडस्ट्री में आप उन्हें देखें एक क्लास मॉडल्स हैं तो उनको भी हम बुलाते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट दिस।
0: या एग्जैक्टली, तो बेसिकली मैम हम लोग बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार मुझे मेरा काम कोई तो देख रहा है या फिर वो मेरा बाबा कर रहा है और वो मुझे एज अ

0: अवार्ड मुझे वो ब्लेसिंग मिल रहा है, तो ये अवार्ड एक ब्लेसिंग है और मुझे लगता है ये ब्लेसिंग के साथ आगे काम करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यू नो हम और ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो काम करना स्टार्ट करते हैं। सो आप वही काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वुमेन है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसे आगे नहीं आता है कि चलो मैंने ये फेस किया लेकिन कोई आगे नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। लेकिन आपने खुद के लिए प्लेटफॉर्म तो खड़ा किया ही है लेकिन आपके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया, सो इट्स बहुत बहुत बड़ी बात है ये। तो लिसनर्स, हमारे आज की ये आज की नारी ये इंटरव्यू में द मल्टी टास्किंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, साइमा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके मैजिकल मॉम्स के बारे में तो हमने बहुत सुना लेकिन शी इज ऑल्सो एन एंकर, वो बहुत अच्छी एंकर है लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है, उनके बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार मैं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट स्टार जो एंकर कोमल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारे आज के सेगमेंट में आज की नारी, ये हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइमा मैम। सो साइमा मैम के बारे में हमने अभी सुना कि मैजिकल मॉम की शुरुआत कैसे हुई और मैजिकल मॉम कैसे काम कर रहा है। सो मैम, मैजिकल मॉम्स के अंडर आप बहुत सारे इवेंट्स भी करते हो तो आप यहाँ पे बिजी हो ही गए थे, लेकिन ये एंकरिंग का कब से है आपके मन में? क्योंकि मैंने जैसे कि आपने बोला कि आपने लिटरेचर वगैरह किया है और फैमिली वॉन्ट्स कि आप टीचर बने, लेकिन फिर ये एंकर, ये टोटली डिफरेंट फील्ड, सो ये इसकी हॉबी या फिर कैसे हुआ ये सब?
1: सी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो मैं इवेंट्स में तभी से हूँ, मुझे वो पसंद था, आई मीन ये सब करना, यू नो अपनी फेयरवेल होती थी, अपने इवेंट्स होते थे, उसमें बैक स्टेज सब करना, बैक स्टेज के साथ फिर मुझे फ्रंट स्टेज
0: मैनेजमेंट
1: करना, फ्रंट स्टेज मजा आने लगा कि नहीं अच्छा है, फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा वहीं मैं यू नो करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपना MBA कम्प्लीट किया और जॉब किया, जॉब में आई वॉज इन HR, तो HR में भी हमारे हमें इवेंट्स आते हैं, HR में हमें यू नो ऑफिशियल वर्क के साथ इवेंट्स भी कवर करना होता है, वो इवेंट्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर रही थी एंड आई यूज टू दिस यू नो होस्टिंग एंड ऑल मैं कर लेती थी वहां पर। तो वो एक पैशन था, यू नो एक आपको पता ही नहीं होता आपका यू नो टैलेंट किधर है या आपका
0: क्या
1: टैलेंट है आपके अंदर, घर से वही था प्रेशर था, पापा टीचर है आपको भी टीचर बनना है, टीचर बनना है। तो बट नहीं इतना सोचो मतलब PhD से वापस आना,
0: एग्जैक्टली
1: इट मीन्स लाइक कि नहीं मेरा वो पैशन नहीं है, मेरा पैशन कुछ और है। और यू नो हाँ ठीक है, मैं जॉब कर रही थी, यू नो आई वर्क विद मारुति एंड दिस SCL, सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, बट यू नो एक सही मायने में मेरा जो ड्रीम है वो इवेंट्स ही है एंड उससे भी बड़ा ये मेरा एक ड्रीम है सोशल वर्क, जो मैं बहुत यू नो व्हेन आई वाज यू नो वेरी यंग तब से मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे याद है कि मैं खुद भी छोटी थी तभी, आई वाज इन 10th, तो तब से मैं फ्री क्लासेस देती थी छोटे बच्चों को, मेरे जो एरिया के स्लम्स एरिया से बच्चे
0: रहते हैं
1: जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तब से मैं वो क्लासेस उनको फ्री क्लासेस देती थी, ऑर्फनेजेस जाना यू नो ये सब करना, ये अंदर से था पहले से, जो पहले था उसमें मुझे खुशी मिलती थी करते करते, बहुत टाइम होता चला गया और अभी भी मुझे मेरा ड्रीम वही है, मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके, अच्छा लगता है, मतलब लगता है
0: फील गुड,
1: यस आई फील गुड, इवन ऐसा लगता है कि हाँ ये ही हमारी लाइफ है। आई मीन आप किसी को हेल्प करके देखो तभी जो खुशी अंदर से मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन वो किसी भी में काम में आपको नहीं मिलेगा। तो अभी भी मैं वो करती हूँ, बहुत टीनेज गर्ल्स हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं किस तरह से वो आपको अपने आप को सेफ रख सकती हैं, यानी उनको हाइजीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड हमको किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। यू नो आजकल थोड़ा टाइम भी ऐसा चल रहा है, कुछ भी इंसिडेंट कभी भी हो जाता
0: है, exactly.
1: स्पेशली फीमेल्स, यू नो हम इतने सारे केसेस सुनते रहते हैं सब, उनको हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं कि उनसे कैसे अपने खुद को बचाना है, वो करते हैं फीमेल्स के लिए, करते हैं लेडीज के लिए कि हाँ जिनके पास यू नो दो बच्चे हैं और उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, फैमिली को कैसे प्लान करना है और उसके बाद में यू नो खुद की हेल्थ को भी कैसे देखना है, वो सब भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यू नो जैसे आपके घर में कोई बर्थडे, आपने एक सेलिब्रेशन ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, तो हम उनको सजेस्ट करते एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप एक ऑर्फनेज में भी जाके करें, एक छोटा सा यू नो ट्राइबल किड्स हैं वहां जाके एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें. तो यू नो लेडीज सुनते भी, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको करना है बट उनको पता ही नहीं हमें क्या कैसे करना है. यू नो कोविड टाइम में मैं आपको बता दी, कोविड में ना मतलब मैंने बहुत काम किया टचवुड, और उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हमारा यू नो मेजर वर्क था. बहुत हमने एक एक टाइम में 300-400 फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है. 3-4 टाइम्स तो आई वाज ऑल अलोन, मैंने मेरी खुद की बिल्डिंग से किया है. और फिर जैसे मैंने किया, मैंने सोशल मीडिया पे डाला. काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप सोशल वर्क कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, बट ऐसा नहीं कि हमें दिखाना है, ठीक है. बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो हम दिखा भी नहीं पाते, हम एवरीथिंग हम लोग नहीं बता रहे हैं. मैंने मेरी मेड के लिए क्या किया, वॉचमैन के लिए क्या किया, बाहर जाते हुए मुझे कौन कौन मिला उसको मैंने क्या दिया, वो तो हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे. बट जो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो अवेयर कर रहे हैं कि आप भी कर सकते हो. तो जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए कि आप सोशल वर्क कर रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, बट बहुत सारे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया. काफी लोगों ने फोन करके बोला कि मेरा अमाउंट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको ही करना है. कोविड में काफी सारे लोग बाहर निकले
0: नहीं,
1: बट वो हेल्प करना चाहते थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया.
0: तो आप एक जरिया
1: बन गए. तो काफी सारे लोगों ने एक छोटा छोटा अमाउंट करके मेरे पास बहुत अमाउंट इकट्ठा हुआ कि आप हमारी तरफ से मेडिसिन दो. जैसे अभी इधर कोकन में फ्लड आया था, उस टाइम पे मैंने बहुत सारा राशन वहां पहुंचाया. ऐसा नहीं कि वो मेरा था, मतलब हम सबने मिलके किया. मुझे देखा लोगों ने, देखकर मुझे कॉल किया, अप्रोच किया और बोला कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, हम भी शेयर करना चाहते हैं. किया और हम लोगों ने हेल्प किया एक दूसरे से. ऐसे इसी तरह से
0: एक यू नो मुझे आपके बातों से यही मुझे अभी तक पता चला है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है. कि काम तो सब लोग करना चाहते हैं लेकिन वो कैसे करना है या फिर उसे कैसे मैनेज करना है ये सभी लोगों को पता नहीं है. मतलब अगर मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ ऐसे सोशल वर्क करूं लेकिन आई डोंट नो कि मुझे वो कैसे आगे आ रहा है. और मुझे लगता है यही आप में वो क्वालिटी है. और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपने इतने अच्छे से काम किए या फिर अभी भी कर रहे हो, सो टचवुड आपका ये जो काम है ये ऐसे ही चलता रहे. लेकिन मुझे इन बिटवीन एक मेरे मन में एक सवाल ऐसे आया कि व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी टीचर बने. वो बेटी तो कुछ अलग ही कर रही है बेटी तो अपना कुछ अलग ही नाम कर रही है भाई. मतलब ऑफकोर्स दे फील प्राउड ऑन यू, बट फिर भी उसके बाद फैमिलीज के क्या रिएक्शन.
1: सी मम्मा को तो मैंने यू नो बहुत टाइम पहले ही खो दिया, यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही. तो तब तक मेरा ये फील्ड डिसाइड ही नहीं हो पाता है. वो जस्ट यू नो स्टडिंग के, हाँ ठीक है मैं पीएचडी कर रही हूँ. तो वो तो मम्मा का सेक्शन था. तो मम्मा, लेकिन मेरी माय मदर वाज लाइक कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो लाइफ में. मेरी फर्स्ट टीचर मेरी मदर ही थे और उन्होंने ही, आज जो मैं भी हूँ, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरी सोच है वो मेरी मदर से ही है मेरे पास. तो हाँ, फादर स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाराज थे व्हेन आई क्विट पीएचडी. ऑफकोर्स कोई भी फादर एक्चुअली नाराज होगा, यू नो इतना ऊपर तक जाना और फिर उसको छोड़ देना. तो ही वॉज लिटिल अपसेट, बट देन ही यू नो ही सॉ कि हाँ ठीक है, इसका ये पैशन है, ये कुछ अलग करना चाहती है, ठीक है, ही एक्सेप्टेड. बट नाउ ही यू नो ही इज वेरी हैप्पी. वो प्राउड फील करते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ लोग मुझे बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, इतनी सारी जगहों पे यू नो अप्रिशिएट करते हैं, उनके सामने अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है. इज वेरी हैप्पी नाउ.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि आपने आपको प्रूव करके दिखाया कि चलो मैंने ये नहीं लेकिन मैंने ये भी जो किया है वो बहुत बड़ा है. और ये हर एक चीज के लिए जो स्ट्रगल लगता है वो आपने खुद फेस किया है कि आगे आने के लिए मुझे एक्चुअल में अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब छोड़ के क्विट करके ये सब करना एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का. और वो बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा आपके लिए.
1: डिसीजन भी टफ होता है, इवन समटाइम्स हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं. मैंने जब एग्जीबिशन, व्हेन आई स्टार्टेड एग्जीबिशन, तो मुझे ऐसा लगता था यार व्हाट आई एम डूइंग, मतलब आई एम सो क्वालिफाइड, मैं इतना हाई पेड यू नो जॉब कर रही थी और अभी मैं क्या कर रही हूँ. यू नो एग्जीबिशन इज नॉट अ इजी टास्क, वो बैग्स एंड ये सब डिस्प्ले करना एंड एवरीथिंग. सो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार ये मैं क्या कर रही हूँ, बट खुद को ही मोटिवेट करती रह रही थी कि नहीं अभी जॉब तो हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, घर में मुझे बैठना नहीं है तो कुछ तो मुझे करना
0: है.
1: चलो ठीक है करते, कोई बात नहीं, एजुकेशन को साइड में रखते, अपना सिर्फ आई एम हार्ड वर्किंग इसको याद रखते कि नहीं लाइफ में. मेरे पापा हमेशा कहते थे काम कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, हमें हर काम करना चाहिए बस जो हमें खुशी दे रहा है. तो किया स्टार्ट और अभी तो टचवुड सब बहुत अच्छा
0: चल रहा है. एग्जैक्टली, लेकिन आप एंकरिंग ना कैसे एंजॉय करो, कैसे एंजॉय करो, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एंकर्स की बहुत ज्यादा क्रेज है मार्केट में. सो वो फील्ड आप कैसे एंजॉय करो, क्योंकि कभी कॉलेज में यू ही स्टेज पे आना और वो जस्ट पैशन को पता चलना, पैशन का पता चलना और उसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, ये आपने किया है. सो वो फील्ड आप कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: सी एंकरिंग में मुझे बहुत मजा आता है. यू नो आई एम वेरी जॉली, यू नो पर्सन, मुझे हंसना हंसाना बहुत पसंद है. और जब हम किसी महफिल में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो बेस हमारा वही है कि आने वाले जो हमारा क्राउड है, आने वाले जो लोग हैं, गेस्ट हैं, वो खुश होने
0: खुश
1: हो जाए. वो किस तरह से खुश होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, और वो तो मेरा यू नो फोर्टे है लोगों को खुश करना. सो एंकरिंग में सी जब भी मैंने मेरा मैजिकल मॉम स्टार्ट किया, तो मैंने खुद ही अपनी, आज तक मैंने अपने इवेंट्स को खुद ही होस्ट
0: किया है.
1: हार्डली किसी शो में मैंने होस्ट बुलाया है अदर से, अलग से, क्योंकि बिकॉज मैं दूसरे कामों में बिजी हूँ, तो एंकर आया है. अदरवाइज मैंने सारे प्रोग्राम खुद ही होस्ट किया है. वो करते करते मुझे, जब मैं खुद के प्रोग्राम होस्ट करती थी, तो मुझे सामने से ही ऑफर आया, यार हमारा प्रोग्राम है, संगीत है, वेडिंग है, आप कर लो ना, आप इतना अच्छे से करते हो, मैनेज करते हो. वो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था मैं इस प्रोफेशन में जाने वाली
0: हूँ. मतलब क्या बात है, मतलब खुद का एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर स्टार्ट किया जर्नी, लेकिन वो खुद इवेंट करते करते बस यू ही मेरा इवेंट है, मैं ही होस्ट करूंगी, होस्ट करते करते ये भी पता चला कि भाई मेरे अंदर एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि चलो मैं लोगों के फंक्शन भी सब होस्ट कर सकती
1: हूँ. और सी टचवुड मुझे बहुत अच्छी यू नो होस्टिंग के लिए आते हैं, ऑफर्स आते हैं, बट मैं बहुत सारा ले नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट मुझे होस्टिंग में मजा आता है, अच्छा लगता है.
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको देख के ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो 100% अगर आप दोगे तो वो डेफिनेटली पूरा होगा, जो आपका ड्रीम है. यू नो हर एक वुमेन के पास उसकी खुद की बकेट लिस्ट रहती है और वो बकेट लिस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग वो उसे पूरे नहीं कर पाते. तो आपको देख के सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो इतना समय में सबको सेम टाइम मिला है, सबके पास 24 आवर्स ही है, लेकिन वो 24 आवर्स में अगर साइमा मैम इतना सब कुछ कर सकती है तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं. सो यही पॉजिटिविटी आप मुझे लगता है कि आप सभी वुमेन्स के लिए यहाँ पर
1: और कर भी रहे हैं, फीमेल्स कर भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. यू नो जब हमारे प्रोग्राम्स में इवेंट्स में आते हैं तो ये देख कर जाते हैं यार ये मैं भी ऐसे इवेंट्स कर सकती हूँ. तो मेरे ही यू नो ग्रुप से कुछ लेडीज ने इसी तरह के ग्रुप स्टार्ट किए हैं, आई एम हैप्पी कि हाँ चलो अच्छा है, वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी पैशन है, वो भी आगे उसके हाँ. मुझे देखा तो यार ये होस्टिंग करती है, मुझे पूछा भी कि हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल करो होस्टिंग. इवन मैं गाइड भी करती हूँ समटाइम्स कि हाँ आप कैसे होस्ट कर सकते हो, कौन से प्रोग्राम होस्ट कर सकते हो. तो अच्छा है एक दूसरे को यू नो इसी तरह
0: सपोर्ट
1: करते हैं और हम लोग एक दूसरे को मिलकर ग्रो कर लेते हैं.
0: एग्जैक्टली. लेकिन मैम हम लोग ये इंटरव्यू के एंड तक आ चुके हैं और मुझे सिर्फ यही पूछना है कि बहुत सारे फीमेल्स का ऐसा रहता है कि मेरी शादी हो गई, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, सैक्रिफाइस करना है, तो उनकी ख्वाहिशें वहीं पर रुक जाती है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ना वो बिना कुछ एक्सपीरियंस के ही हार मान लेते हैं कि नहीं भाई मेरी अब शादी हो चुकी है या फिर ये मुझे नहीं करना है या फिर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो यही उनके जो भी आगे के जो कुछ पॉइंट्स है वो यही पे स्टॉप हो जाते हैं. तो आप सभी फीमेल्स को क्या बताना चाहोगे?
1: मैं एक्चुअली मेरा एक मैसेज सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट हार मत मानो कभी भी यार. लाइफ में हार नहीं मानो, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो. और अगर कन्विंस नहीं हो रहे, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, बच्चे कन्विंस नहीं हो रहे, ट्राई, कन्विंस करते रहो, कीप ट्राइंग यार. आई मीन नॉक करते रहो, कभी तो वो डोर ओपन
0: होगा.
1: यस और वो होता है. मेरे हस्बैंड ने नहीं कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है, घर में बैठना है, लेकिन मैं करती रही, नॉक करती रही कि नहीं अच्छा ठीक है, एग्जीबिशन तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो. सो वो करते रही है और लाइफ में कुछ तो करना है. और एक जो हम हमेशा सुनते हैं, सबको पता है वो एक कि वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट. अब भले आपके फादर के पास कितना पैसा है, यू नो हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, ब्रदर आपका कितना वेल टू डू है, लेकिन यू शुड बी इंडिपेंडेंट. आपको अपनी वही इंडिपेंडेंसी आपको अपनी डॉटर्स में देनी है. यू नो कि हाँ हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, फ्यूचर में भी आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ऐसा ही होना है. और ठीक है वो आपका बैक सपोर्ट है वो कितना भी रहने दीजिए, लेकिन हमारी खुद की पहचान एक अलग होनी चाहिए. तो उस पहचान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग ही फील होता है. मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मतलब
0: मेरा खुद का कुछ अलग,
1: हाँ मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी है. मतलब मुझे मेरे फादर के नाम से या मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जानते, मुझे मेरे नाम से जानते हैं. मेरी डॉटर मुझ पर प्राउड फील करती है कि हाँ मेरी मम्मी कुछ है, है ना. मेरी मम्मी, वो मैं किधर जाती तो मेरी मम्मी को
0: इतने लोग जानते हैं. बेस्ट फीलिंग एवर,
1: एंड शी ऑलवेज सेज कि माय मदर इज अ सुपर हीरो, वो तो एकदम मेरी सुपर हीरो है. तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है.
0: सो बेसिकली यही है कि सिर्फ कोई भी काम में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. एंड ये स्किप ट्राई
1: डेडिकेशन
0: बहुत ज्यादा
1: इम्पोर्टेंट
0: है. और मैम आगे यहाँ तक का जो सफर था आपका, वो बहुत प्रॉब्लम्स को भी फेस करके आपने तैर किया है, पार किया है, यहाँ तक पहुंचे हो. अब जो सक्सेस मिल रहा है वो आप एंजॉय भी कर रहे हो. लेकिन मुझे सिर्फ यही पूछना है कि आगे के कुछ सालों में, मतलब आगे के 5 साल में, आगे के 5 ईयर्स में, आप अपने आप को या फिर मैजिक मॉम्स को कहाँ पर देखते हैं?
1: सी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैजिकल मॉम्स तो मेरा ड्रीम है, मेरा बेबी है. और अभी तक जैसे लाइक ये मैजिकल मॉम्स का एक सर्टेन एरिया है, नवी मुंबई, नवी मुंबई से थोड़ा सा बाहर मुंबई तक जानते हैं. बट मैजिकल मॉम्स का जो अभी यू नो पहचान है वो है मैजिकल मॉम्स ऑफ इंडिया. तो हमें इसको ग्रो करना है. आई एम वर्किंग ऑन दैट कि खाली इस एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की फीमेल्स के लिए काम नहीं करना है हमें मुंबई के लिए करना है, महाराष्ट्र के लिए करना है, हमें पूरा इंडिया के लिए करना है. तो अभी सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम किधर से भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं. तो अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाँ हम मैजिकल मॉम से हम क्या क्या कर सकते हैं. और जैसे ये ग्रो होगा ऑटोमेटिकली हम अपग्रेड होते चले जाएंगे.
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली डेफिनेटली. मतलब आपकी जो सोच है और आपने जैसे बात किया है कि डेडिकेशन होना चाहिए, और आपके अंदर वो डेडिकेशन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शी इज यू नो एक कि मैंने ठान लिया और मुझे करना है. और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है. और डेफिनेटली आपने अगर बोला है तो आप डेफिनेटली वो करके रहोगे.
1: यही एक फील चाहिए. अगर मैंने सोच लिया यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मैं ही करूंगी इसे.
0: एग्जैक्टली. सो बहुत आपको बेस्ट विशेस है.
1: थैंक यू.
0: आप डेफिनेटली ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. कीप इंस्पायरिंग एवरीवन. और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. एंड आई होप जो भी हमारे लिसनर्स है, स्पेशली जो फीमेल्स है, वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस.
1: थैंक यू सो मच.
0: यस. सो लिसनर्स, हमारे आज की नारी ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे साइमा मैम. और उनका जो करियर है कि अगर आपके लाइफ में आप एक डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन मैंने गलत लिया है ऐसे फील आपको नहीं होना चाहिए. वो डिसीजन अगर आपने यस बहुत ज्यादा टफ डिसीजन था, लेकिन वो डिसीजन से आगे आकर खुद की नई पहचान बनाना, खुद के पैरों पर खड़े होना और बहुत सारे फीमेल्स को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देना, ये जो काम आज मैम ने किया है और उनकी जो एक जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली जर्नी है. और यही जो हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट था साइमा मैम के साथ, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया है. आपको ये स्पेशल पॉडकास्ट, स्पेशल इंटरव्यू कैसे लगा आप हमें जरूर बताइएगा. और इसी सेगमेंट में मैं आरजे कोमल यहीं पे ब्रेक लेती हूँ आपका. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: तो लिसनर्स कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य. हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आरजे कोमल, आपकी दोस्त और शो की होस्ट. आप सभी का स्वागत करती हूँ. आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. जैसे कि आप सबको पता है कि आचार्य 90 FM के स्टूडियो से हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं. डॉक्टर हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, बहुत सारी बातें तो होती रहती है, लेकिन हमारा आज का सेगमेंट एक टोटली डिफरेंट रहेगा और सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा. क्योंकि आज मेरे साथ, मतलब मैं नाम क्या दूं वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर बोलो, इन्फ्लुएंसर्स बोलो या फिर कुछ और. सो जैसे कि हम सब इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा जो रील्स है वो देखते रहते, तो तभी हमें प्राउड चेंबुरकर हो, प्राउड थानेकर हो, मुंबई मेरी जान हो, मुंबई शहर घाटकों पर बस, ये जो पेजेस के जो रील्स देखने मिलते हैं वो बहुत ज्यादा लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं. तो ये पेजेस और ये कम्युनिटी पेजेस जो रन कर रहे हैं वो हेमंत केसरी आज हमारे साथ आचार्य 90FM के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है हेमंत आपका।
2: थैंक यू सो मच आचार्य 90FM मुझे इन्वाइट करने के लिए। एंड अगर आपको बताऊं मैं तो मैं भी इसी कॉलेज का एक्स स्टूडेंट रह चुका हूं।

0: जो कि बहुत अच्छी बात है. मैं 2012 के बाद स्टेप इन कर रहा हूँ कॉलेज में एंड द कॉलेज हैज कम्प्लीटली चेंज्ड.
1: सो क्या बात है, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एलुमिनाय मीट्स एलुमिनाय. सो स्टार्ट करते हैं. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जो एक क्रेज बन चुका है, हम लोग देख रहे हैं कि लोग पागलों की तरह लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों को चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग. तो हेमंत, आपको ऐसा कब लगा कि मुझे भी कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे मीडिया में आना चाहिए, मुझे ये सब जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचानी है?
0: ये मेरे अंदर का जो एक जो कीड़ा है मीडिया का, मुझे तब पड़ा था जब मैं आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड आई यूज्ड टू मिमिक्री ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो फिर वो होते होते फिर 10th पास होगी, फिर आई केम टू एचआर कॉलेज एंड देन लेटर ऑन देयर यूज्ड टू बी अ सर कॉल्ड एज मिस्टर शर्मा. आई डोंट रिमेम्बर हिज फर्स्ट नेम एंड ही यूज्ड टू टीच अस ओसी. तो उन्होंने बोला था कि तेरे लिए ना मीडिया में बहुत स्कोप है, सो व्हाई डोंट यू बिकम अ न्यूज एंकर. तो न्यूज एंकर बनने के चक्कर में आई वांटेड टू गो फॉर मास मीडिया, बट लेटर ऑन ड्यू टू समथिंग आई परस्यूड माय बीकॉम फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेम कॉलेज. बट इन 2011 समथिंग हैपेंड वेयर आई केम इन टच विद दिस पेज कॉल्ड आरवीसीजे, रजनीकांत द सीएडी जोक्स. सो वो पेज देखे मैं काफी इम्प्रेस था कि मतलब फेसबुक यूज टू बी द कूल थिंग एट दैट टाइम, कि आप मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया वाज नॉट इवन दैट थिंग, फेसबुक यूज टू बी द कूलेस्ट थिंग. सो मैंने अपना खुद का पहला पेज बनाया था सख्त लौंडा, जिसपे एक साल के अंदर वी गॉट नियरली अराउंड 3 लाख फॉलोअर्स. एंड फिर मुझे लगा ऐसा कि क्यों आई हम अपने चेंबूर को रिप्रेजेंट करें सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसको प्रमोट करें हम. तो फिर हमने वो पेज बनाया. इस पेज का नाम पहले था चेंबूर लवर्स.
1: ओके, चेंबूर लवर्स,
0: चेंबूर लवर्स. एंड लेटर ऑन आई जस्ट गॉट अस क्लिक की चेंबूर लवर्स यार क्लिक नहीं हो रहा है. फिर बाद में मैंने सोचा कि पेज का नाम है की पैसा एंटर
1: कुछ तो इंटरेस्टिंग और यू नो कैची.
0: सो आई केप्ट दिस प्राउड चेंबूरकर एंड आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम था कि प्राउड चेंबूरकर किस दिन एक नाम बनेगा. आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स एंड दे आर माई फैमिली, दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली. आई वुड से कि वो मुझे आज भी कहीं अगर चेंबूर में कुछ अगर हुआ, कुछ और हादसा होता है, फायर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी अगर होता है, दे सेंड मी द क्लिप्स की भैया आप ये डालो.
1: Okay.
0: भाई ये डालिए प्लीज करके एंड प्लीज अलर्ट चेंबूर गर्ल्स. तो आई एम हैप्पी फॉर दैट. सो समवेयर वी केम ऑन फेसबुक इन 2013 एंड देन लेटर ऑन इन 2014 वी केम ऑन इंस्टाग्राम.
1: ओके,
0: एंड आफ्टर दैट द जर्नी स्टार्टेड स्लोली स्लोली. मैं यही बोलूंगा कि प्राउड चेंबूर कर रातों रात बड़ा है
1: नहीं.
0: इट टुक टाइम, इट टुक टाइम, बट आई एम हैप्पी कि आज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ.
1: यस,
0: माय गॉड स्पीच.
1: क्या बात है. सो बेसिकली ये सब पेजेस है, उसमें से पहला पेज कौन सा स्टार्ट हुआ था?
0: सबसे पहला पेज जो था प्राउड चेंबूर पे था, इंस्टाग्राम पे.
1: इंस्टाग्राम पे, ओके. एंड देन इट विल लाइक घाटकोपर बस एंड ऑल एवरीथिंग. घाटकोपर,
0: यस, आई वुड से घाटकोपर बस तो रिसेंटली स्टार्ट किया हमने 2 साल पहले.
1: ओके,
0: एंड सबसे पहला प्राउड चेंबूर पे था. इट टुक मी आई गेस अराउंड 7 इयर्स टू कम्प्लीट 10,000 फॉलोअर्स.
1: Yes.
0: It's a long journey. Yes. फिर एक साल के अंदर आई गेस मेरे 50 से 60 हजार फॉलोअर्स बढ़े
1: टोटली.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इवन मुंबई मेरी जान, उसके बाद मुंबई मेरी जान मैंने स्टार्ट किया था 2015 में. सो वी हैव गॉट नियरली अराउंड 2,678,000 फॉलोअर्स नाउ, विच इज अ कोर फॉलोअर्स मुंबई के. मतलब जहां तक मुझे पता है कम्युनिटी पेजेस इतने नहीं होते थे मुंबई के. हम लोग 2 लोग थे ऑल ओवर मुंबई. एक मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, नितिन पाटुडे. ही स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड दादर मुंबई का.
1: यस,
0: और मेरा पेज था प्राउड चेंबूर. तो वो मैं उनको देख के इंस्पायर होता एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड.
1: पहली ऐसी कौन सी वीडियो डाली थी कि वो मतलब आपने इतना मतलब उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि उसे इतने ज्यादा व्यूज और इतना ज्यादा रीच मिलेगा चेंबूर की?
0: अगर चेंबूर एक किंगडम है तो आई वुड से अगर चेंबूर एक एम्पायर है तो ये जो किंग है उसके वह है चेंबूर का राजा. सो चेंबूर के राजा का जो पहला मोर है, सो उनका जो पहला जो एक वीडियो था उनके आगमन का वीडियो था
1: yes.
0: जहाँ पे लोग भीड़ एकदम मतलब उनके आगमन का वीडियो, लोग ऐसे नाच रहे जश्न उल्लास में
1: हाँ.
0: और हमने वहाँ पे पोस्ट किया था कि आई नाउ फील कि समवेयर इट इज रॉन्ग बट नो लालबाग नो दादर आई गेस इट्स आवर चेंबूर एंड दैट वीडियो गॉट नियरली अराउंड 40,000 शेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो 40,000 शेयर एट दैट टाइम वी गॉट और उसके बाद से फिर पेज वो चल पड़ा
1: nice.
0: तो वो चीज है. एंड सेकेंड आई वुड से कि गणपति के टाइम की ही बात है मेरे घर में पंडित जी थे एंड वो एक्चुअली ही स्पेशली एबल्ड वो ही स्पेशली एबल्ड उनको शायद पोलियो बोल सकते और वो अपने माँ बाप के अकेले बेटे हैं. तो जब पंडित जी आए तो पंडित वो पूजा करते करते रो रहे थे.
1: अच्छा.
0: सो मैंने बोला क्यों रो रहे पंडित जी? तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी माँ बहुत गरीब हो तो उनकी मम्मी जो है उनकी मम्मी को कुछ IAS कुछ अटैक आया था. एट दैट टाइम शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन सम हॉस्पिटल और उसका बहुत फीस था. और एक पंडित जी का पैसे है नहीं क्योंकि यार ऑफकोर्स ही स्पेशली एबल्ड फर्स्ट एंड सेकंड उतना पैसे है नहीं उनके पास, वो खुद भाड़े घर में रह रहे हैं. पता नहीं क्या है, पापा का आशीर्वाद है, मैंने पापा का नाम लिया, मैंने पंडित जी आपको नसीबा जो रहेगा पापा दिला देगा. हमने वो पोस्ट किया, पापा का इतना आशीर्वाद है कि पंडित जी को अच्छा खासा हेल्प आया. हेल्प मतलब पैसा उनके पास नहीं है लेकिन कोई तो एक था भगवान का फरिश्ता, भगवान का बंदा जिसने आके उनके सारे फीस पे कर दिया. जो 2.5-3 लाख रुपए पूरा पे किया उसने.
1: ओह माय गॉड.
0: तो दैट इज इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहा हूँ. सो आई फील हैप्पी फ्लैट.
1: और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये है सोशल मीडिया की ताकत. मतलब सोशल मीडिया मतलब लोग, मैं वो टॉपिक के पर आने वाली हूँ कि सोशल मीडिया को लोग बहुत बार बुरा भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसका ये है, लेकिन ये भी है कि कुछ लोग हैं जैसे हेमंत जैसे जो ऐसी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो एक्चुअल में किसी का यू नो फायदा कर रहे हैं, एक्चुअल में लोगों को प्रॉफिट दिला रहे हैं और एक्चुअली लोगों की हेल्प कर रहे हैं. लाइक मैंने आपका कॉन्टेंट देखा, इतने सारे हिडन जिम्स है चेंबूर में. चेंबूर की बात नहीं करें बल्कि जितने भी आपके पेजेस है आपको बहुत ज्यादा कुछ हिडन जिम्स कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा. तो आप ये ऐसा कंटेंट है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप पहले स्टार्टिंग में, अभी तो मतलब लोग आपके पास आते हैं कि चलो भाई ये है तो ये इसके बारे में बताओ या फिर, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज आई थी या फिर स्टार्टिंग में जब आपने सोचा कि चलो इसके बारे में हम लोग कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या फिर ये वाला कॉन्टेंट है ये हम लोग बनाते, तो स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज आई थी?
0: Absolutely, डिफिकल्टीज मैम ये आती है फर्स्ट की ऑनेस्टली बोलो तो डिफिकल्टी है भी और नहीं भी. डिफिकल्टीज ये होती है कि पीपल दोज हू जॉइन यू एट सम लेवल दे स्टार्ट व्हेन दे विथड्रॉ बैक, हियर इज द फर्स्ट थिंग, योर ड्रीम ब्रेक्स, वो एक डिफिकल्टी होती है. सेकेंड ये होती है मैम कि यू हैव टू बी वेरी गुड विद द कॉन्टेंट जनरेशन. इट शुड बी हियर कि आपको कौन सा कंटेंट डालना है, कौन से कंटेंट को कैसा प्रेजेंट करना है.
1: मैं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट,
0: मैं अगर एक नॉर्मल एक मरीन ड्राइव चले जाए वैसे बारिश का मैं वीडियो लेके डाल दू वैसे तो वो नहीं काम करेगा. यू हैव टू मेक श्योर यू आर रोमांटिसाइजिंग द एंटायर वीडियो, यू आर एडिटिंग एवरीथिंग, सो यू शुड नो व्हाट यू हैव टू पोस्ट. सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि कौन सी चीज को कैसा पोस्ट करना है,
1: कैसे कर रहे हो किसी भी चीज को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है.
0: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूँ कि डायमंड गार्डन का जो प्लेन है अभी बहुत तो बोलते हैं बोरिंग हो चुका है, समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू, बट वो 90s किड्स के लिए एक्चुअली इमोशन है. अगर आप देखो मैं अपने मम्मी पापा डैडी के साथ में जाता था वहां पे बैठ के भेलपूरी खरीद के बाहर से बैठ के और मेरा ख्वाब होता था कि किस दिन मैं प्लेन को उड़ाऊंगा. तो उसको प्रेजेंट करना चाहिए मैम.
1: तो जैसे कि आपने बताया कि ये डिफिकल्टीज तो होती है लेकिन अब जाके हम लोग देख रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ प्लेस एक्सप्लोर किए, फूड ज्यादा एक्सप्लोर किया है और कई ऐसे इंसिडेंट है जो चेंबूर में या फिर कई और जो भी आपके पेजेस है कम्युनिटी पेजेस है वहां पर जाके आपने एक्सप्लोर किए हैं. सबसे ज्यादा ये अलग अलग पार्ट है, लाइक यू नो एक कोई कंटेंट एक्सप्लोर करना, एक फूड को एक्सप्लोर करना, किसी जगह को एक्सप्लोर करना, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? किसी पर्टिकुलर थिंग्स मतलब यानी कि कोई जगह को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है या फिर कोई फूड को एक्सप्लोर करना या फिर कैसे?
0: ऑनेस्टली मैम ऐसा कुछ है नहीं, मैं सच बोलता हूँ, कॉन्टेंट जनरेट करना, शूट करना, इट्स माई पैशन एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ कि भगवान ने, ऊपर वाले मालिक ने मुझे मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन में दिया.
1: सो
0: जब मैं कैमरा पकड़ता हूँ, जब मैं कैमरा हैंडल करता हूँ, जब मैं शूट करता हूँ, तो फूड हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. मुझे आई फील दैट सेटिस्फैक्शन एंड इमेंस ग्रेटिट्यूड की एटलीस्ट जो मेरा पैशन में वो कर रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते ना मैम, यू हैव नो आइडिया, आप उसमें 12 घंटा दे, 28 घंटा दे, 24 घंटा दे या तीन तीन दिन दे,
1: यू
0: नेवर गेट टायर्ड ऑनेस्टली. सो और सो या फूड वगैरह, इट हैज बिकम वेरी मिनिस्क्यूल फॉर मी बिकॉज राइट नाउ मैं फूड 100 केस कर चुका हूँ, मैं 100 केस कर चुका हूँ मैं फूड तो वैसा है. और बट व्हाट इज द मोस्ट अल्टीमेट सेटिस्फाइंग थिंग फॉर मी इज व्हेन आई मेक अ री आई पोस्ट ऑन माय पेज एंड देन आई गेट टू नो कि बॉस मैं चेंबूर वालों को या मुंबई वालों को कुछ नया दे रहा हूँ.
1: दैट
0: इज बेस्ट पार्ट.
1: ओके, अभी मैंने बात की कि स्टार्टिंग में आप लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, ये अकेले का काम नहीं होता है.
0: बिल्कुल
1: भी नहीं, क्योंकि जब आप एक कोई काम हाथ में लेते हो तो कब तक आप अकेले जाओगे, कब तक आप अकेले घूमोगे, कब तक आप अकेले शूट करोगे? क्योंकि अब आपका एम्पायर भी बड़ा हो चुका है या टचवुड वो ऐसे ही बढ़ता रहे, तो टीम कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे सोशल मीडिया हैंडलिंग में और पूरा ये सब जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो इसके लिए?
0: टीम मैम, टीम ऑफ कोर्स टीम बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है. टीम का एक बड़ा योगदान होता है और लोग जो आप जोड़ते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट. ऑफ कोर्स अब मेरे साथ में ऐसा है मैम कि आई मेक श्योर कि आई हैंडल मोस्ट ऑफ द पार्ट. मैंने टीम रखे हैं बट फॉर मिनी स्कूल थिंग लाइक एडिटिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, आई वुड से फील्ड वर्क के लिए मैंने एक बंदे को रखा है, साथ में अपने दो लोगों को रखा है. फॉर से थाने के पेज के लिए मेरी अलग टीम है, तो वो अलग थाने कवर करती है. घाट कोपर के लिए मेरे दो लोगों की टीम है, तो वैसे ही है. बट यू हैव टू अगेन टीम हैंडल करना, इट्स मोर लाइक अ टेकिंग अ फैमिली. एंड सेकेंड थिंग, आज के रेट में चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, बीट रिलेशनशिप, बीट टीम, वो ऐसे टूटती है, ऐसे टूटती है मैम. सो अगेन टीम हैंडलिंग इज एन आर्ट एंड नॉट एवरी वन कैन डू दिस एंड आई एम एन आर्टिस्ट.
1: सी, थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि यू नो मैं अभी की जनरेशन भी हम लोग देख रहे हैं, लाइक वी आर 90s किड्स. ओके, सो अभी की जो जनरेशन है, जो अभी जो रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पर, मैंने ऐसे भी इंसिडेंट देखे कि लोगों के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लोगों को व्यूज ज्यादा नहीं मिल रहे, लोगों को रीच नहीं ज्यादा मिल रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर दे फील सैड, दे फील बैड फॉर इट कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा यू नो वो बात का इश्यूज कर रहे हैं. तो ऐसे आप ऐसे लोगों को लिए कुछ?
0: I would say it's a virtual world. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे एक बात बोला था back in 2018 जब मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मतलब इतने फॉलोअर्स मेरे नहीं बढ़ रहे थे. मैं तब डिप्रेशन में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता था कि मैं कुछ नोट कर लूंगा लाइफ में. सो योर फॉलोअर्स, लाइक्स, ऑफकोर्स वेन यू हैव फॉलोअर्स इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व देम द गुड कॉन्टेंट. लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे तो डिप्रेशन में मत जाओ यार. थिंक ओवर इट, वर्क ऑन एल्गोरिथम. अभी रिसेंटली केस था कि सम इन्फ्लुएंसरशिप पॉजिटिव है, शी कमिटेड सुसाइड. सो जान दे के फायदा कुछ नहीं मैम उस पर, या फिर सोचना नहीं है. आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे तो थिंक ओवर इट. फॉर एग्जाम्पल, पीपल कम टू मी, आई ऑल्सो टीच पीपल हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द कॉन्टेंट. आई टीच पीपल हाउ टू वर्क ऑन द कॉन्टेंट. तो मैं ऐसा काम करता हूँ. सो डोंट थिंक, इसको टेक्निकली लीजिए, सिंपल सी बात है. दिल पे मत लीजिए, दिमाग में लीजिए. दिल पे लेंगे तो एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और उल्टे पुलटे थॉट्स आएंगे, दिमाग में लेंगे तो आप सोल्यूशन भागेंगे, सोल्यूशन ढूंढना भागेंगे उसके लिए. सो वर्क ऑन योर एल्गोरिथम, वर्क ऑन योर कॉन्टेंट, वर्क ऑन योर हुक लाइन, वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी एंड

0: Completely AI, and they have got 400-500k followers.
1: ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आपने अभी कहा कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ये तो सब होता रहता है. आपके साथ भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, लाइक फेसबुक पेज को लेकर, को वहां पे मिलियंस में फॉलोअर तक पहुंचना और वो पेज डिलीट हो जाना. तो फिर ऐसे ये चीज को आपने कैसे हैंडल किया था, क्या बताना चाहोगे?
0: ये बोल सकते हैं कि मेरा मतलब जब मालूम पड़ा सब, मैं सवेरे उठ के ऐसा द फर्स्ट टाइम थिंग आई डू इज व्हेनेवर आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई जस्ट लाई डाउन फॉर 10 मिनट्स आई गो डीप इनटू माय माइंड एंड आई जस्ट थैंक गॉड दैट आई एग्जिस्ट दैट्स इट देन आई वेक अप द फर्स्ट थिंग आई सी इज माय फोन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस
1: यस
0: जब मेरा वो 6 मिलियन का पेज गया तो रोना नहीं बोल सकते लेकिन तकलीफ हुआ एंड आई नो वन थिंग कि सर सलामत तो पगड़ी हजार
1: नॉट 50
0: पगड़ी हजार तो अभी मैं जिंदा हूँ क्रिएटर जिंदा है ना तो मैं और पेज बना लूंगा इसको लेके मैं रोऊ डिप्रेशन में जाऊं अपने एंग्जाइटी को पालू कुछ नहीं है ठीक है 6 मिलियन का पेज था बिल्ड करने में काफी सालों गए थे लेकिन ठीक है फिर से बना लेंगे और ऐसे मेरे एक पेजेस नहीं है फेसबुक पर कम से कम 70-80 पेजेस अभी भी है तो टेंशन नहीं है
1: मतलब इतने पॉजिटिवली आपने वो इंसिडेंट को लिया
0: एब्सोल्युटली सी आई नो वन थिंग एक मैसेज मैं दे नहीं सकता मैं मुझे अपना नहीं मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं यूट को मैसेज
1: दूँ
0: लेकिन दिस इज माय स्ट्रेटेजी व्हेनेवर यू हैव बिल्ट योर वन प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर वन धीरे धीरे इसको बिल्ड करो क्योंकि अगर आप एक पे टिक करोगे तो फिर कभी भी टा सकते हैं एवरीथिंग इज पेरिशेबल इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पेरिशेबल तो या
1: आपको सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे क्या देखना पसंद है मतलब क्योंकि जैसे लोगों की चॉइस होती है ना कोई सिर्फ म्यूजिक वीडियोस देखते हैं कोई कुछ देखता है तो आपको ज्यादा क्या पसंद है
0: कच्चा बादाम बादाम
1: नाइस
0: नहीं ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम पे ऑनेस्टली राइट नाउ आई लाइक वॉचिंग एक प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस बीट यूट्यूब बीट इंस्टाग्राम बीट इंस्टाग्राम आई वॉच हिज वीडियोस बिकॉज अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मैंने चीज नोटिस किया है अब मैं फिर से इतना प्रवचन नहीं दूंगा मैं इतना बड़ा नहीं प्रवचन दूं लेकिन दुनिया के पीछे आई एम बाय द वे आई एम 33 राइट नाउ सो थोड़ा बड़ा हूं आप लोगों से एज ए बड़ा भाई एडवाइस दे सकते हैं आप लोग दुनिया के पीछे भागेंगे आप तो आपको मायूसी मिलेगी दुनिया के पीछे भागेंगे आपको मायूसी मिलेगी अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन और प्रेम जो है वो भगवान से ही मिलेगा भगवान आप कोई भी रिलीजन के हो आप मुस्लिम है तो आप अपना मजहब फॉलो कीजिए आप अगर हिंदू है तो आप अपना ग्रंथ फॉलो कीजिए आप अगर बुद्धिस्ट है तो अपना ग्रंथ फॉलो कीजिए बट अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन एंड लव यू विल गेट ओनली फ्रॉम गॉड तो यस
1: ओके वन मोर थिंग कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं या फिर कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं कोई भी चीज हो मतलब एक चीज जिसमें हमें देखकर मे बी कुछ बुरे वर्ड्स मुंह से निकले ऐसा कंटेंट जब वायरल हो जाता है ऐसे कंटेंट को जब मिलियंस में व्यूज मिलते हैं व्हाई दिस और लोगों को भी वो पसंद आ रहा है लोग कमेंट्स कर रहे हैं लोग लाइक कर रहे हैं तो ये सब देख के क्या फील होता है
0: आई फील दैट आई ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल नो कंटेंट इज बैड मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज ये मेरा धंधा ही है मेरा काम है नो कॉन्टेंट इज बैड फॉर मी मेरे लिए सारा कॉन्टेंट बेस्ट ही है अगर वो वीडियो अगर फॉर एग्जाम्पल आजकल इंस्टाग्राम पे एक यूपी का कोई डांसर है सन्नी डांसर गोरखपुर का है वो कोई भोजपुरी गाने पर डांस करता है मोटा सा ही इज वेरी वेरी मोटा इज एक्चुअली रॉन्ग वर्ड बट ही इज टैलेंटेड इफ यू सी उसकी एजिलिटी उसका स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग So, अगर आप देखें ना उसका डांस वायरल हो रहा है रीजन क्या पता है ही इज डूइंग समथिंग यूनिक लोगों को एक्चुअली यूनिक चीजें पसंद है वो टाइम गया जब लोग स्क्रीन पे एक एक्टर खड़ा है ऐसा मसल बॉडी बिल्डिंग लेके ऐसा बाहर फैला रहा है देन पीपल अरे क्या भाई क्या बात हो नहीं लोगों को शाहरुख पसंद है लोगों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है तो सिंपल सेम थिंग है लोगों को रॉ चीज बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक वायरल ट्रेंड होता है लेडी यूज टू कम कि हेलो गाइस चाय पी लो गरम है तो उसका वो

0: वायरल होने का रीजन क्या था? बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द लीग. एंड द ओनली थिंग व्हिच आई रियली हेट इज दैट पीपल व्हेन दे सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई देमसेल्फ फॉर गेटिंग व्यूज एंड लाइक्स, दैट इज व्हाट आई हेट द मोस्ट. तो वो एक चीज है. अगेन मेरे लिए वो भी कॉन्टेंट है बिकॉज मेरे फील्ड में ही, तो वो चीज है.
1: यस ओके. सो अब मैं फैमिली के बात करूंगी क्योंकि आपने बताया कि आपकी फैमिली थोड़ा मतलब ये हम लोग के जब भी मॉम डैड रहते थे तो मॉम डैड का एक ऐसा कहना था कि जॉब पे जाओ, कोई स्पेसिफिक जॉब करो, इतने अच्छे से पैसे कमा कर एक अमाउंट घर पे लेके आओ. तो जब आपने ये स्टार्ट किया लाइक इसमें आपने अपने बोला कि मैंने मेरे पैशन को मैंने मेरा प्रोफेशन चूज किया है और इसमें आप आगे चल रहे हो, तो फैमिली के स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या थे और अभी के रिएक्शन के थे और फैमिली कैसे रिएक्ट होती है आपके ये सब काम पर?
0: मेरे मॉम डैड बोलो बहुत भोले, बहुत भोले, मतलब बहुत भोले. आज भी फोन करेंगे, मतलब मैं अगर बाहर रहूंगा 10 बजे पापा फोन करेंगे, हेलो कहाँ पे हो, घर कब तक आओगे. तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब वो ऐसे हैं कि अगर देखेंगे किसी को सामना ना भूखा है तो अपनी रोटी छोड़ देंगे. वो ऐसे लोग हैं ऑनेस्टली. और ये उनके कर्मों का फल है जो आई गेस हमको मिलता है. मुझे मिला है स्पेसिफिकली, मुझे मिला है. हम तीन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ.
1: अच्छा.
0: तो वो चीज है. एंड लकीली आई हैव ऑलवेज मेड अ बैलेंस बिटवीन माई वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ. तो मुझे मालूम था कि एज सून एज आई हैव क्रॉस्ड 24 के एज आई हैव टू गिव सम मनी टू माय पेरेंट्स. तो आई हैव आई यूज्ड टू वर्क समवेयर. मैं काम भी करता था बाहर से. मैं मेहनत मैंने बहुत किया था ऑनेस्टली. मैं बाहर काम भी करता था, पैसे भी लाता था. और जब पैसे नहीं होते थे तो आई वुड से मेरा बड़ा भाई, मैं उनका नाम कोट करूंगा, प्रमोद केसरी. वो मेरे दूसरे पिता समान है. वो मेरे दूसरे पिता समान है. प्रमोद केसरी, पंकज केसरी, ये लोग मेरे बड़े भाई नहीं, ये लोग मेरे पिता समान है. दे हैव एक्चुअली पैम्पर्ड,
1: बिग सपोर्टर,
0: बिग सपोर्टर्स ऑफकोर्स, क्योंकि उनके उनके बिजनेस है, उनके बिजनेस है. और ऐसे नहीं कि लोग वेल टू डू है बहुत, लेकिन उनका बिजनेस और उनके अंदर एक इच्छा है कि हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा भाई करना करना दे, कोई दिक्कत नहीं है इसको. लेकिन स्टिल बट आई हैव ऑल्सो वर्क इक्वली हार्ड टू मेक श्योर दैट आई एम गिविंग माई फैमिली समथिंग समथिंग. एंड नाउ आपको बता दूं मैम कि मैं जब मैंने प्राउड चेंबर को स्टार्ट किया तो 7 साल मैंने कुछ नहीं कमाया था. 7 साल तक मैंने कुछ नहीं कमाया था प्राउड चेंबर से. अगर आप 13 लें तो 2020 कोविड तक मैंने कुछ नहीं कमाया था उसमें. प्राउड चेंबर से कुछ नहीं कमाया था. मतलब लोग मुझे बोला था आप क्या करने का, शूट करने का, कितना, 150 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा, ऐसे आरिस्टोकोटन 3200 रुपए दूंगा. ये लोगों का एटीट्यूड था. कोविड ने बहुत लोगों की आंखें खोली. तो उस टाइम पे भी मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. और मेरे पेरेंट्स अभी वो मुझे सिर्फ दुआएं देते हैं.
1: हाउ स्वीट.
0: अभी मुझे सब दुआएं देते हैं यहाँ पे भी आने से पहले. आई एम नॉट, यू कैन नॉट से, बट या आई एम ममास बॉय. आई लव माई फादर लाइक एनीथिंग. मेरे पिताजी आज भी वो इंस्टाग्राम पे, ही इज अराउंड 71 एंड यस, सो आज भी इंस्टाग्राम पे बैठते हैं. तो उन्होंने इंस्टाग्राम इसलिए इंस्टॉल किया ताकि वो मेरे रील्स देख सके. कहा का तुम डाले थे रील यार खाने का? खाना अच्छा है वहाँ का, हम जाएंगे. अपने बेटे का काम दिखाता हूँ.
1: बेटा
0: है हनुमान जी की कृपा है. सो यस, ये मेरी जर्नी रही.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो एट द एंड हमने बहुत बातें तो की आपके बारे में, पता चला लाइक कंटेंट वगैरह वगैरह ये सब बात कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी लोग जो न्यू कमर्स हैं वो आ रहे हैं सोशल मीडिया को देखकर कि चलो सोशल मीडिया से बहुत पैसा मिलता है, सोशल मीडिया पे पैसा है, सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं तो उनको कुछ जॉब नहीं करनी पड़ती, ऐसे सब बहुत सारे बातें सामने आती है ऐसी सब. तो वो क्या है, वो सच क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मैं इतना कमा रही हूँ, मैं घर बैठ के लाखों में कमा रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो वो सच क्या है मैं जानना चाहती हूँ. और आप ये सच सभी लोगों को बताएं.
0: देखिए मैम, मैं स्टिल आई फील कि आई एम अ वेरी स्मॉल क्रिएटर फॉर दिस, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत टॉप लेवल के दोस्त हैं मेरे. आपने कभी किसी को देखा ना जो लोग मशीन गन या फिर ऐसा कुछ AK-47 टाइप चलाते हैं, कभी आपने मूवी में देखा है?
1: हाँ,
0: तो जो AK-47 का जो बेस होता है ना, हाँ, तो हैंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आपके कंधे पे लगी होती है. सो व्हेन यू पुल द ट्रिगर, जितनी फोर्स से गोली बाहर निकलती है उतने ही फोर्स से वो बंदूक पीछे भी आता है आपके कंधे पे. सर अगर आप ट्रेन नहीं है वो चलाने में, तो आपका कंधा एक बार में टूट भी सकता है. The same thing. Everything has, every action has got an equal reaction.
1: Equal reaction, yeah.
0: ऐसे बहुत से लोग हैं जो महीने का 8 लाख, 7 लाख, 30 लाख कमाते हैं. But their life is very much dark, very much sad. They don't show on social media. There are people, those who are earning 7 to 8 lakh rupees a month, 10 lakh rupees a month. They are very happy.
1: Yeah.
0: And you know what is common between in these two people? They have learned a lot.
1: Yeah.
0: सबको दिखता है कि पैसा बहुत है. सबको दिखता है भाई 6 लाख कमा रहा है, ये कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा. मेरे पास लोग आए, मेरे पास लोग आए, भाई आप तो कम से कम अपने 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं. 1 करोड़ रुपए, उसमें कितने से रोते हैं मैं पूछ रहा हूँ. तो यू नीड टू फर्स्ट लर्न फर्स्ट. लोग आते हैं मेरे पास कि भाई आपने इतना पैसा कमाया, कम से कम 1 करोड़ रुपए का कमाया होगा, आपने ये किया है वो किया है. मेरा सिर्फ एक ही चीज रहा है कि आप सीखिए पहले.
1: एग्जैक्टली.
0: आप सीखिए पहले, पहले किसी एक क्रिएटर के अंडर में जाइए, उसके साथ में कम से कम 2 साल बिताइए. उसके साथ में कम से कम 2 साल बिताइए, उसको अपना 2 साल पूरी तरह दीजिए. 2 साल का पूरा, तब मैं बोलूंगा 24 घंटा. आपकी नींद जो होती है ना 8 घंटे की, आपने 10 घंटा निकाल के 14 घंटा उसको दो. आपको रगड़ना होगा पहले, पहले आपको आग में तपना होगा, तब जाके आप सोना वो कुंदन बनेगा. तो वो चीज है, हमने भी दिया है, हमने बहुत दिया है, हमने बगैर पेमेंट के काम किया है. ऐसा भी रहा है कि पेमेंट नहीं मिला है, लोगों ने फ्रॉड किया, लेकिन उसके बाद में जो हमको जो सीख मिली है, जो कैमरा एंगल सीखने मिला, कंटेंट की स्ट्रेटजी सीखने जो मिली है, फिर बाद में बहुत कुछ जो मिला. आपको मैं बात बोलता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा. आई मेट अ वेरी बिग सेलिब्रिटी फ्रॉम चेंबूर, अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, अ बॉलीवुड एक्टर, ठीक है, एंड ही न्यू माय पेज फ्रॉम चेंबूर. I met him. I in some event I had a chance to meet him and his bodyguard is a friend basically of my brother. So ek event mein jaane ka mauka mila, usse milne ka mauka mila, and he knew my page. I told him, sir, I have small page of Chamber, and of course you have a legacy. So he's like, yo, nice, I know this page, proud Chamber kar. And he was very humble, very loving. So that is, इन शॉर्ट, अभी लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब स्टार से मिल गया, ये मिल गया. अगेन हमने सीखा है, वो टाइम दिया है, 2-3 साल दिया है, किस्सा है,
1: जीरो से स्टार्ट किया है.
0: तो आपको पहले घिसना है, बहुत घिसना है आपको. पहले काम सीखना है. आप अचानक से आओगे बोलोगे मिलियन व्यूज नहीं आ रहा, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाओगे, इतना फास्ट चीज नहीं होता,
1: नहीं होता है यार.
0: फास्ट आप और हम हुए हैं, सोशल मीडिया ने हमारे थॉट्स को फास्ट किया है, लेकिन जो बेसिक्स है 2+2=4 ही होता है. आप 2+2 को 22 नहीं बना सकते,
1: नहीं कर बना सकते.
0: तो यस,
1: दैट्स ट्रू. मुझे लगता है जितने भी न्यू बिगिनर्स हैं, मतलब जो है जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी. हेमंत आपने बहुत अच्छी, मतलब मैं अच्छी नहीं बोलूंगी, जो सच है वो बताया, जो रियलिटी है वो आपने ये पूरे बातों में बताई है. एट द एंड मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपके जितने भी कम्युनिटी पेजेस है, आप जितना भी जो भी कॉन्टेंट आप लोगों के लिए डाल रहे हो, लोग वो पसंद कर रहे हो, वो ऐसे ही बढ़ता जाए. और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि एनी सिंपल मैसेज और एनी थिंग फॉर बिगिनर्स की क्या, मतलब क्या रहना चाहिए उनमें
0: बिगिनर्स के लिए, जो मतलब सोशल मीडिया. अगेन किसी भी क्रिएटर के अंडर में जाइए, उसके अंडर में काम कीजिए, मिनिमम 2 साल काम कीजिए. उसके साथ में एडिटिंग सीखिए, बैठ के कैमरा एंगल हैंडलिंग सीखिए, फील्ड पे उतरिए, भागिए, भले पसीना भागिए, And once you have done that, once you know that you have learned certain thing, and then you need to take a small, slow start. और वो करते करते मैं आपको एक लास्ट चीज बोलूंगा कि ऐसे नहीं कि आपने इंस्टाग्राम पर पेज चालू कर लिया, यूट्यूब पे कर लिया, तो आपने फिर आप वेट करेंगे कि मुझे कब डील आएगा, डील आएगा, ऐसे करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. यू नीड टू अपना पेज ग्रो कर रहे हैं, साइड बाय साइड जॉब भी करते रहिए. जो मैंने भी किया, आई हैव वर्क्ड इन कॉल सेंटर्स, मैंने कॉल सेंटर में काम किया है, मैं कपड़ों की दुकान में मैंने काम किया है. Because of course I come from very small family.
1: Yes.
0: घर में तो पैसे देने ही नहीं है. तो वो सब है. तो take care of family, take care of your passion, and that's how you'll grow. और ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं. सबको लगता है कि passion follow करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लगन चाहिए और दिमाग चाहिए. So दिमाग लगाइए, लगन लगाइए और किसी creator के under में जाके अच्छे से सीखिए. तो फिर आपकी जय विजय होनी.
1: क्या बात है. मतलब मैं सच में ऐसे बोलूंगी कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहेगी टू ऑल द बिगिनर्स और जो भी लोग हैं. जो मैं बोलूंगी कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है मोस्टली जो सोच रहे कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ. क्योंकि कॉल सेंटर में जॉब करना, एक कोई कपड़े के शॉप में जॉब करना और आज बड़े बड़े ब्रांड के लिए शूट करना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. एंड वो आपने अचीव किया है अपने पैशन को फॉलो करके. सो या हैट्स ऑफ एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन. और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. टीम को आप साथ में लेकर चल रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है. टीम को ऐसे ही आगे लेके जाओ. और जितने भी आपके, मैं सच में बोलूंगी कि मतलब आपके ये पूरे बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसी बहुत सारी चीजें की है जिससे लोगों का कुछ अच्छा हुआ है. जैसे आपने दो तीन एग्जांपल्स दिए, सो ये अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है. मैं बस ऐसे ही कहना चाहूंगी. एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट. आपने आपका बिजी शेड्यूल में से टाइम निकल कर आप यहाँ पर आए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द फॉलो अप्स. एंड आई जस्ट मेक वन, आई विल मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट. सो आचार्य एफएम के लिए अगर इफ यू हैव गॉट एनी प्लान्स वेयर यू आर कमिंग अप एंड यू वांट टू पुश टैलेंट्स एंड यू वांट टू एलिवेट टैलेंट्स फ्रॉम चेंबूर, सो प्राउड चेंबूरकर इज ऑलवेज अप विद यू.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
0: जय श्री राम.
1: सो आई नो आपको ये आज का जो इंटरव्यू और जो भी हमारा टॉक शो है बहुत अच्छा लगा होगा. तो आप जो भी आपका फीडबैक है हमें प्लीज डेफिनेटली जरूर आपके कमेंट्स और जो भी है आप सब हमें डेफिनेटली बताएगा. और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इज 9167993999. फिलहाल अभी आज के लिए यही पर.